पल पल में शामिल है। वो कौन है जो मेरी मंजिल है? वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ?

मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है।

आज का दिन एक कहानी के साथ शुरू करें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। सिंपली आफरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और कभी कभी ना जो हमें दिखता है सच उससे बिल्कुल अलग होता है, इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है। और इसको एक कहानी के साथ मैं बताना चाहूंगी, जहां एक माँ और बेटी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी रिलेटिव के घर से लौट रहे होते हैं, और बेटी का कंप्लेन मोड फुल ऑन होता है कि मम्मा कितने अजीब लोग थे ना, चाय देखा कितने पुराने कप में दी हमें, बेडशीट देखी आपने कितनी गंदी सी, इतनी पुरानी सी थी, घर भी कैसा था, इतनी सीलन लगी थी, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे ये लोग। माँ ने सुना सुना सुना फिर कुछ देर के बाद में बस बोल पड़ी कि बेटा वो गंदे और अजीब नहीं थे, अजीब तुम्हारी सोच है। पता है जिस कप को तुम पुराना कह रही हो ना, उसमें उन्होंने तुम्हें चाय दी, और खुद जिस कप में उन्होंने चाय पी ना, वो ऑलमोस्ट टूटा हुआ था। हाँ, पुरानी बेडशीट पर बिठाया जरूर, लेकिन तुम्हारे सामने वो एक पंखा रखा जो पूरी टाइम तुम्हारे तरफ था, और वो खुद गर्मी में बैठे रहे क्योंकि वो चाहते थे कि तुम कंफर्टेबल बैठी रहो। तुमने उनकी चीजों की कीमत देखी पर उनकी नीयत की कीमत देखी ही नहीं है। मेरे ख्याल से ना दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं वो लड़की वो बेटी की तरह बन जाते हैं। हम लोगों को देखते बहुत हैं पर महसूस बहुत कम करते हैं। हम किसी के कपड़े, घर, बोलने का तरीका, उनका बिहेवियर, एक दो चीजें देखी और पूरी कहानी डिसाइड कर ली, पूरी तरह से हम जजमेंटल हो गए। तो बस आज इस खूबसूरत सुबह पर इतना ही कहना चाहूंगी, दैट लोगों को परखने से पहले थोड़ा महसूस करके देखिए, क्योंकि हर इंसान की एक तरफ की कहानी होती है जो हमें नजर नहीं आती। विद दिस खूबसूरत ख्याल, माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wird mal burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहां रहा है
3: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूं
2: मतलब
3: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
2: आपको से फोन मत करियो ना मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
3: क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
6: उसे सब पता है लेडीज एंड जेंटलमैन योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
6: The Mentalist Suhani Shah.

लहंगे में गोटा जड़ा के चली थी, बालों में

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

अच्छा कभी सोचा है कि आपका अगर कोई माइंड रीड कर ले तो, मतलब एकदम सही सही आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दे। और यस, मैं कोई साईफाई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी में बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सिंपली आफरीन को। और बिल्कुल हमारे कतर में ऐसे ही कुछ रियलिटी में जादू होने वाला है, और वो कब क्या वही तो बताने आई हूँ मैं। यस, वेरी फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर आने वाली है 25th of September, और ये इवेंट हमारा मिर्ची आपका अपना मिर्ची लेकर आया है भाई। वेल, चलिए बात करते हैं सुहानी शाह के बारे में। आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर आपने इतने सारे वीडियोज इनके देखे होंगे, सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ, वे शी इज एब्सोल्युटली रीडिंग द माइंड। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो मैजिशियन है, बट नहीं, वो अपने आप को एक मेंटलिस्ट कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ट्रिक्स दिखाना नहीं उनका काम है, बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर को इतनी डीपली ये समझती है कि आपको सच में लगेगा कि भाई ये कैसे कर रही है, भाई क्या, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। बिलीव इट और नॉट, उन्होंने सिर्फ 7 साल की एज में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। आज उनके नाम पर हजारों लाइव शोज हैं, दुनिया भर में सोल्ड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, और अब हमारे कतर भी वो लेकर आ रही है ये मैजिक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुक करो, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कतर में, है ना, मतलब मिर्ची पहली बार ऐसा कुछ लेकर आया है एटलीस्ट। सो यू कैन नॉट मिस सुहानी शाह, दैट इज हैपनिंग लाइव इन कतर 25th of September, और ये होने वाला है QNCC में। तब तक के लिए आप जो है फटाफट से जाइए SCT यानी सोनो सिटी से जाके अपनी टिकट्स बुक कर लीजिएगा। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Papa John's. Enjoy double delight offer.
1: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66, and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Smile partner, Naseem Dental Center. Her smile ho perfect. Sif Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia. Your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. Google आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, Instagram आपकी लाइक्स, Netflix आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC.
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo. बुक योर्स नाउ.
1: द मेंटलिस्ट सुहानीशा.

0: खत्म।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, बात कुछ और है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची। और होता है अक्सर कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपको महसूस तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तकरीबन 45 के ऊपर या तकरीबन 50 तक, लेकिन आपकी जो गाड़ी है वहां पर तो 42-43 यही दिखा रहा है। ये कोई धोखा नहीं दे रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि अल मरजाम, ये सुना है आपने? हाँ, ये जो सीजन है ये शुरू हो चुका है जहां पर ह्यूमिडिटी इन कतर इज एट इट्स पीक। तो बस ये कुछ सिलसिला ना एक महीने तक चलता रहेगा जहां पर बहुत पसीने आने वाले हैं आपके, भले ही वेदर जो है इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिखा रहा होगा। जैसे आज का ही टेम्परेचर देख लो।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: वेदर अपडेट। देखो वेदर आज का ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 43 पर रहेगा और मिनिमम जो है 34 पर रहेगा, लेकिन जो महसूस कर रहे हो आप तकरीबन 48 के करीब ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस अल मरजम, उस वजह से ही ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है हवा में और आपके पसीने छूट रहे हो और आपको गर्मी हो रही है। लेकिन कोई ना, वो कहते हैं ना हर रात के बाद सवेरा आता है और हर अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर सब कुछ आता है, जिसकी वजह से आपको अब ठंडी के मौसम भी जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। सो ऑल इन ऑल मजे के गाने आपके लिए लाइन अप है राइट हियर, जो आपको गर्मी में भी ठंडी का एहसास दे। और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah live.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 89.6, 89.6,
2: मिर्ची।

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virgua, la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं?
1: आप कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे,
3: अरे यार
1: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
3: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
2: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा हूँ, लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
1: है,
3: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ों को।
1: हेलो
3: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
6: The Mentalist Suhani Shah live in

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

Well, Arijit Singh ki awaaz mein ye gana right here on Mirchi. Main hoon Afreen aapke saath. और जब मैं हूँ यहाँ पर तो आपको और अखबार की क्या जरूरत है बताइए मुझे. वेरी गुड मॉर्निंग मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे हो आप टीम के साथ. और ये जो इतने दिन से चल रहा था हम हर रोज आकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं तापमान की और ये सारी चीजों की, तो क्या मजाक चल रहा था बताइए मुझे. क्योंकि अब कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट का ये कहना है अब कतर इज गोइंग टू एंटर द फाइनल फेज ऑफ पीक समर हीट. यस, मतलब आज के ही दिन यानी 11 अगस्त से अल नाथरा स्टार, इफ आई एम राइट, अल नाथरा स्टार ये जो है ये नजर आएगा. और उसके बाद अगले जो 13 दिन तकरीबन समझ लीजिए 2 हफ्ते है, ह्यूमिडिटी तो हम देख ही रहे थे, गर्मी भी और बढ़ जाएगी विथ विंड्स मोस्टली नॉर्दर्ली विंड्स जो है ये होगी. बस मतलब समझ नहीं पा रहे हम कि ये क्या था. ये हम ट्रेलर देख रहे थे और अब आप कह रहे हो कि यार मूवी आना बाकी है, तो ठीक है वो भी देख लेंगे. अब तकरीबन मैं तो देखो 12 साल से कतर में हूँ और ये सिलसिला 12 साल से देख रही हूँ. आप मुझे बताइए कि आप अभी अभी अगर कोई कतर में आया है और किसी का अगर ये फर्स्ट समर है, सो आई रियली वॉन्ट टू नो दैट हाउ आर यू एक्सपीरियंसिंग दिस, कैसा लग रहा है. 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर. बाकी तो हम सारे जो है सीजन है यहाँ पर कि यार ये ठीक है, ये तो गर्मी नॉर्मल है. मतलब जब जुलाई भी आता है ना तब भी तक हम कहते हैं कि ये थोड़ी ना गर्मी है, अरे गर्मी तो अब आएगी. तो मैं भी वही कह रही हूँ, गर्मी अब अगले 2 हफ्ते तो आएगी और ये होने वाली है शदीद वाली गर्मी. With this, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में कोई जादू ही हो जाए बस जो हमें इस गर्मी से बचा ले. माइक से दिल तक आप ट्रेन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: Papa John's. Enjoy double delight offer.
1: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66, and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Smile partner, Naseem Dental Center. Her smile ho perfect. Sif Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia, your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out.
2: Kabhi pyar ka ehsaas aur kabhi khud ko diya hua ek khoobsurat tohfa. Festival of Diamonds is back at Tanishq. Roz pehenne ke liye stylish designs ho ya kisi khas mauke ke liye stunning diamond jewelry. Har piece mein hai Tanishq ka bharosa aur behtareen craftsmanship. Yahi nahi, get a free gold coin on every 3000 riyals spent on diamond purchases. To aaj hi visit kare Tanishq at Lulu Hypermarket, D Ring Road and Doha Festival City today. TNC supply.
1: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
3: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
1: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: गुरु की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची आपने सुना। और गुरु भाई क्या कर रहे हो, मतलब एक टाइम था इतने मस्त मस्त गाने आपने बनाए हैं, लाहौर और बन जा तू मेरी रानी, लेकिन अब क्या गाने बना रहे हो? आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट द न्यू सॉन्ग विच हैव कम अप विद बिकॉज आई कांट इवन टेल इट एंड आई डोंट वॉन्ट टू प्रमोट इट ऑल्सो बिकॉज यार मतलब गुरु भाई गुरु क्या कर रहे हो आप? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और अगर आप मेरी तरह ही म्यूजिक को लेकर बहुत ही अपडेटेड रहते हो और पता रहता है कि भाई क्या चल रहा है, जेंजी कौन से नए गाने लेकर आ रहा है एंड व्हाट इज मोस्ट ट्रेंडिंग, सो बस गुरु भाई का एक नया गाना आया है गुरु रंधावा का, और बस इट्स नॉट गेटिंग ग्रेट अटेंशन एक्चुअली। सो वेल ये हो गई बात म्यूजिक इंडस्ट्री की, लेकिन बात करते हैं राइट नाउ हमारे गेम्स के बारे में, जहां लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेलने का तो वक्त हो गया है। और बता दूं आपको कि ये आज का जो सीन है बड़ा ही इजी पीजी सीन है। सो हियर इट गोज,
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट
2: वैसा तुमको करनी पड़ेगी
3: जैसे अब तक तो बहुत चल रही मेरी
2: जैसा मैं बोलेगी वैसा तुमको करनी पड़ेगी
0: थोड़े से रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी आप अभी ऑफिस वगैरह जाकर बहुत काम करने वाले हो। 5000196 इज माई नंबर एंड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस हियर। यस मैं देखती हूँ इन्हें और रिप्लाई करती हूँ, सबके मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं। मीन वाइल आप जो है नवाज भाई क्या बोलना चाह रहे, जरा सुन लीजिए। बॉलीवुड बोल डाल राइट टू रन मिर्ची।
4: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
6: मैं करूँ?
7: आप करोगे?
6: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
7: तो वो तो पता है मेरा बस चलता है एक-एक को घुसन मार के आती हूं।
6: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड?
5: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
9: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
8: योर स्पेशल ऑफर?
9: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है, ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
8: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
9: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
8: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
10: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
11: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
12: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
13: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
11: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
14: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
11: The mentalist Suhani Shah live.

0: नेहा कक्कड़ ध्वनि भानुशाली की आवाज में ये गाना सत्यम अजयते का राइट हियर ऑन मिर्ची। और आज तो बड़ा ही मजा आ गया, मतलब ये टाइम पर ना स्टूडियो में ऐसा लगता है कि सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। वेल, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता दूं, हम लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेल रहे हैं और यहाँ पर मैंने एक सवाल पूछा था, रादर मैंने एक डायलॉग सुनाया था और आपने गेस करना था कि आखिर बॉस ये डायलॉग है कौन सी मूवी का, और बहुत ही इजी पीजी था। ट्यूजडे ना बॉस, दिमाग को ज्यादा जोर नहीं डालना है। सो हियर इट गोज।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: जैसा मैं बोलेगी वैसा तुमको करनी पड़ेगी।
3: जैसे अब तक तो बहुत चल रही मेरी।
0: ऑल राइट, जैसा मैं बोलेगी वैसे ही उधर तुमको मैसेज करनी पड़ेगी। 5000196 वैसे व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लाइक आई सेड समुद्दीन, और आज आई कांट प्ले बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मैसेजेस। जुलकरनैन है, और फिर ये कौन है, अपना नाम लिखा करो दोस्त, सदनाम है। देन ऑल्सो देर इज मोहम्मद अमर, देन चार्ली का मैसेज है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, अख्तर का मैसेज है, और ऐसे ही जिन्होंने भी मैसेज किया है बिल्कुल सही किया है कि आफरीन, ये तो दीपिका और हमारे किंग खान है ना, चेन्नई एक्सप्रेस का डायलॉग है ये। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट बॉस। और इसी के साथ अगला गाना प्ले कर रही हूँ फ्रॉम द मूवी चेन्नई एक्सप्रेस, सुनिधि चौहान, अरिजीत और नीति मोहन की आवाज में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सब कुछ याद आ जाएगा ये गाने के थ्रू। राइट रणवीर जी बने रहिएगा विद आफरीन, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे फिर फोन ही नहीं आएगा।

0: महमूद राघव चैतन्या की आवाज में ये गाना राइटर और मिर्ची, मैं हूँ आफरीन आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:04 की तरफ।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: देखो अब तो ये सिलसिला शुरू हुआ है और सीजन तो अगला बढ़िया बढ़िया से बढ़िया आने वाला है और बस देखते जाइए क्या होता है आगे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और मैं बात कर रही हूँ ये इवेंट्स और एग्जीबिशंस का सिलसिला। और कतर में ना कोई फ्लैगशिप इवेंट्स काफी सारे ऐसे हैं, जैसे हमारा फूड फेस्टिवल, दैट इज वन ऑफ अमेजिंग, जिसका जो स्केल है हर साल बढ़ते जाता है। फिर उसी तरह से सूक वाकिफ में होने वाले हर साल जो एग्जीबिशंस होते हैं, जो फ्रूट्स के होते हैं, डेट्स के होते हैं, ये सारी चीजें, तो एवरी ईयर वी नो कि ये चीजें होने ही वाली है। वैसे ही वन ऑफ द फ्लैगशिप इवेंट्स कह सकते हैं एक और जो है हमारे कतर में, दैट इज कतारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फाल्कन्स एग्जीबिशन। और इसका ना 10th एडिशन आ गया है, विच इज गोना टेक प्लेस फ्रॉम 8th of September अंटिल 12th of September। और इसके बारे में अगर मैं बताऊँ ना, दिस एग्जीबिशन इज गोइंग टू बी एन अनदर लेवल। हाँ जी, जो एंथुजियास्ट है ऑफ हंटिंग, फाल्कनरी, हेरिटेज एंड एन एडवेंचर टू एक्सपीरियंस अ रेन्यूड एंड डिस्टिंक्टिव एडिशन ऑफ दिस पॉपुलर इवेंट, वेल दिस शायल इवेंट इट रिटर्न्स फॉर द 10th एडिशन। और यहाँ पर क्या है, द विजिटर्स कैन एक्सपेक्ट लाइव फाल्कन ऑक्शंस, इनफैक्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मतलब फाल्कन्स जो वहाँ पर होंगे वो कितने खूबसूरत है, कौन, आई जस्ट कैन इमेजिन, आई थिंक सो, मैं कभी गई नहीं हूं इसमें, आई शुड विजिट दिस, के फाल्कन्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैसे हो सकता है और क्या पैरामीटर्स पे होता होगा, ये जानने के लिए जरूर ये देखना चाहिए क्या है यहाँ पर, क्या क्या होता है। इतना ही नहीं, वहां पर लेटेस्ट हंटिंग, कैंपिंग एंड 4x4 गियर भी होते हैं, एंड जैसे मैंने बताया कॉम्पिटिशन इन फाल्कन ब्यूटी, हुड डिजाइन एंड कॉल मेकिंग, ये सारे पैरामीटर्स भी होते हैं जिस पर कॉम्पिटिशन वहां पर होने वाला है। सो एडमिशन जो है इसका एब्सोल्युटली फ्री है, जाकर वहां पर कतर का जो एक कल्चर है, जो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, फाल्कनरी विच होल्ड्स, ये सब कुछ वहां पर दिख जाता है एट शायल। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, इसी तरह से कतर में होने वाले बढ़िया से बढ़िया इवेंट्स आपके पास लेकर आऊंगी। और जैसे मैंने कहा कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग बॉस, सितंबर ऑनवर्ड्स देख लीजिए, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होने वाले हैं ना इवेंट्स में जाने के लिए। और वो सारे इवेंट्स बताएगा कौन, यहाँ पर राइट हियर माइक से दिल तक आफरीन और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vie va la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello, madam. Good evening.
2: Hi.
3: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
2: वहीं आके ऐसा तेरे बैठ मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मैडम, आपका तो मुर्गा बन गया।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: I'm sorry, no, I'm sorry.
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah.

अलीशा चुनाई की आवाज में ये गाना 90s इंडी पॉप का ऐसा गाना जो हमारे लिए कितनी सारी यादें ताजे कर देता है। लेकिन टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, आप मुझे बताइए कि ये गाना सुनते ही आपको कौन याद आता है? अलीशा नजर आती है एज अ क्वीन सिटिंग देयर, याद होगा ना वो म्यूजिक वीडियो, उसमें ऐसी वो रानी जैसी थी, या फिर मिलन सुमन नजर आते हैं? बताइए जरा। देखो मैं तो जाहिर सी बात है, मैं तो मिलिंद सुमन की बात ही करूंगी। और यस, मिलिंद सुमन ने क्या फिटनेस मेंटेन करके रखा है ना अभी तक, ग्रेट इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उनसे तो भाई। वेल, ये हो गई बातें अबाउट दिस म्यूजिक वीडियो एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन कभी कभार आफरीन इतनी बह जाती है ना कुछ गानों के बारे में, कुछ नॉस्टैल्जिक इतनी हो जाती है कि यार वर्तमान में आ जाइए आफरीन और बात कीजिए कि ये पैसे का क्या हालचाल चल रहा है आज का। सो यस, आई पे का एक्सचेंज रेट ये कहता है जी, एक्सचेंज रेट कह रहा है कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.11, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इट्स 76.20, बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.94 पर है। एक कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज आपको मिल रहे हैं 92.01 एंड नेपाली रुपीज चल रहे हैं आज 41.79 पर। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 1 एंड ओनली 89.6 पर। माइक से दिल तक आफरीन के साथ।

0: Mirci.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल, लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल, बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल।

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

आशा ताई उदित नारायण सुखी पाजी की आवाज में यादें मूवी का गाना। भले ही मूवी आपको याद रहे न रहे, लेकिन आई थिंक सो इस मूवी के गाने काफी अच्छे थे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड टाइम हो चला है कि आफरीन अपना मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोले। आज के मिस्ट्री बॉक्स में क्या है? आज के मिस्ट्री बॉक्स में ना तीन शब्द है, ऐसे शब्द जो आपको कोई मूवी के बारे में डायरेक्टली हिंट दे देगा। बस तीन शब्द ही काफी है मेरे ख्याल से कि आपको सब कुछ बता देगा कि क्या है। ठीक है, सो हियर इट गोज। पहला शब्द जो है वो है चांदनी चौक। ठीक है, दूसरा शब्द है लंदन। ओके, यू आर गेटिंग देयर राइट। और तीसरा शब्द है गमला। दैट्स क्वाइट इजी यार, इट शुड बी इजी यार। गमला, गमला यानी वाज, फूल का वाज। ठीक है, तो 5001H96 इज माई नंबर। वो कौन सी मूवी है जिसमें ये तीन एस्पेक्ट्स आते हैं, ये तीन सारी चीजें आती है? पहले तो मैंने कहा चांदनी चौक, फिर मैंने कहा लंदन, और फिर मैंने कहा गमला। अब वो गमला जो है ये लंदन से चांदनी चौक को बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर लेता है। 5001H96 वेर इन आई हैव गॉट मैसेज ऑलरेडी फ्रॉम प्रिंस इनियर। तब तक मैं इनके सवाल का नहीं, इनके जवाब का मैं जवाब देती हूँ। तब तक आप अगला गाना सुनो, ए आर रहमान स्ट्रिंदी वेंकटेश की आवाज में। ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
2: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
3: पावभाजी.
2: शाबाश. डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
4: 11.
2: गोली मार भेजे में भेजा
3: स्टोर करता है.
2: शाबाश. लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलोसफी से?
3: गांधीयन.
2: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
3: केके मेनन.
2: खत्म.
1: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता. आदमी का नाम राजकुमार राव. रेडियो स्टेशन का मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
5: Only on Mirchi. It's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah, live.

0: मोहित चौहान की आवाज और ये गाना दिलजीत पाजी की मूवी चमकीला मूवी का ये गाना ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन, इम्तियाज अली की डायरेक्शन एंड वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ऐसे ही गुड मॉर्निंग ना ये मूवी में बताया गया था। बताती हूँ कौन सी मूवी में मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोलती हूँ और फिर बताती हूँ इसके अंदर से क्या निकला है। कहाँ गया? हाँ, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। सो आज जो है तीन वर्ड्स निकले, मैंने बताया पहले तो था चांदनी चौक, फिर था लंदन एंड देन इट वॉज गमला। गमला वाज कौन सी मूवी है? आई थिंक सो एक ही मूवी ऐसी हो सकती है, वन एंड ओनली क्लासिक मूवी। मैं थोड़ी बताऊंगी, आप ही बताओगे कौन सी मूवी है।
1: हाय अफरीन, हाय प्रिंसन, दिस इज प्रिंसन हियर।
0: हाँ जी,
1: द मूवी नेम इज कभी खुशी कभी गम।
0: दैट्स राइट,
2: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग,
2: फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।
0: बिल्कुल सही,
2: दिस इज सलीम।
0: ओके सलीम,
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: ये मूवी का नाम है कभी खुशी कभी गम।
0: हाँ जी, That's right. It is indeed कभी खुशी कभी गम। और कभी खुशी गम के कितने सारे मोमेंट्स हैं। पहले तो चांदनी चौक वाले सीन्स जहाँ पे काजोल का वो मस्त मौला जैसा एक पूरे मूवी में उनका यही एटीट्यूड था, यही एक किरदार था। एंड देन वो शाहरुख खान का रोमांस, वो उनका मनाना पटाना, एंड देन अमिताभ बच्चन का वो एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही एटीट्यूड। आई जस्ट लव्ड एवरी पार्ट ऑफ दिस मूवी। एंड आई वंडर कि ये मूवी अब के जमाने में अगर ऐसी मूवी रिलीज होती है क्या उसको ऐसे ही प्यार मिलेगा या फिर क्रिंज कहा जाएगा। देखो, हम मिलेनियल्स ने इस मूवी को क्रिंज नहीं कहा, वी रियली लव्ड इट, बट विल यू रियली थिंक इट इज क्रिंज नाउ इफ इट इज रिलीज्ड।
4: सूरज हुआ मत्थम
0: सुनने का हमारा अलका याग्निक की आवाज में ये गाना तो बनता है ना बॉस।
4: ऑन
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot. With Mirchi. Fresh Maal.
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: वेद शर्मा की आवाज और ये गाना मलंग का टाइटल ट्रैक राइटर और मिर्ची और इस खूबसूरत सी सुबह 11th August ट्यूसडे का दिन मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:09 की तरफ
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: हाँ जी बात करते हैं अब मिर्ची के इवेंट के बारे में. देखिए अब तक तो भाई सब जगह खबर तो पहुंची गई रहेगी कि मिर्ची देखो हमारा सुहानी शाह वाला इवेंट लेकर आ रहा है. सुहानी शाह कौन है नहीं पता है तो बता दूं आपको, ये इंडिया के नामचीन जानी मानी मेंटलिस्ट है जो आपका दिमाग रीड कर सकती है एंड क्वाइट लिटरली. मतलब अगर आपने इसके आई एम श्योर यू हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ हर. एक क्यूट सी लड़की है, छोटे छोटे बाल है एंड इफ यू डोंट नो That is सुहानी शाह. अच्छा वो वाला वीडियो तो हमने देखा है. सलमान खान के साथ भी ये वीडियो था, धोनी के साथ भी इसने वीडियो बनाया था, फिर आमिर खान के साथ भी था एंड सो मेनी मोर पीपल. या एंड क्या करती है लिटरली आपके दिमाग में घुसकर वो बता लगा देती है कि आप क्या सोच रहे हो. तो ये सारा जो माइंड गेम्स है ये सब कुछ होने वाला है हमारे कतर में 25th of September. QNCC इज द प्लेस. टिकट्स फटाफट से बुक करो बॉस, बाद में देखो भाई. अब देखो ये भी हो गया होगा कि अब आपकी जो फैमिली है छुट्टियों से लौट गई होगी और फिर नाउ आप सेटल हो गए होंगे कि हाँ भाई अभी छुट्टी से आ गए. तो आप सोचो ना, अब वीकेंड आएगा, मिलकर सोचो कि क्या करना है, टिकट्स निकालना है, किसके साथ जाना है, क्या है, तो वो सब कर लेना वीकेंड पे. एस सिटी एंड नूनू सिटी इज द प्लेस. मीनवाइल वो ये है टू माय फेवरेट गाना संजू राठौड़ की आवाज में. एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vid vala burka. Milci, burka. Milci.
1: Navid.
0: बोल रहा हूँ।
1: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: वो आपको मुझे बताना होगा।
1: तो मैं अभी बता दूँ?
0: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
1: संजना।
0: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
1: अपने हस्बैंड का।
0: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
1: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
0: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
1: भड़क भी जाते हैं।
0: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
1: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
0: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
1: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताता
0: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
1: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
0: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
1: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
0: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

0: Well, this song definitely had the best of three. यानी यार तीन का कमाल इसे कहते हैं. शंकर महादेवन, शान और के की आवाज में ये गाना, जहां तीन जबरदस्त एक्टर्स थे, सैफ अली खान, आमिर खान, अक्षय खन्ना एंड शंकर एहसान लॉय की म्यूजिक. एज आई सेड, तीन का वंडर. And not only this song, कोई कहे from the movie दिल चाहता है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं है भाई, ये पूरी movie की अगर बात करें तो पूरा का पूरा ये एक mood है. And let's talk about this movie because दिल चाहता है को हो गए हैं 25 years. Can you believe that? अब थोड़े से आप चौकन्ना हो जाएंगे कि अरे यार ये movie तो हमने school college में देखी थी. Really 25 साल हो गए? हाँ जी, 25 साल पहले जब dating apps नहीं थे तो हम गाना गा के ही तो पूछा करते थे.
1: जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो
0: लड़की है कहाँ. 25 साल बाद भी रिलेशनशिप का सवाल वही है.
1: जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं,
0: जाने क्यों. और हाँ जी, हार्ट ब्रेक भी हो जाए ना तो आज भी थेरेपी प्लेलिस्ट का परमानेंट मेंबर यही गाना है.
1: तन्हाई, तन्हाई, मिलो है फैली हुई.
0: ओए होए, बट इजंट दैट द मैजिक ऑफ दिल चाहता है. उसकी फ्रेंडशिप, लव स्टोरीज, मैडनेस, म्यूजिक, कुछ भी डेटेड नहीं लगता अगर अब भी आप देखो. एंड टॉकिंग अबाउट गोवा, एक मूवी जिसने गोवा को सिर्फ हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं, दोस्तों के साथ वाली एक परमानेंट प्रॉमिस बना दी थी. वो रोड ट्रिप, वो चपोरा फोर्ट जहां पर तीन दोस्त थे, उसके बाद तो जैसे हर फ्रेंड सर्कल का एक गोवा प्लान होना कंपलसरी हो गया था. भले ही वो गोवा का प्लान बने ना बने, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप तो बन ही जाता था. यू कैन ऑलमोस्ट से दैट दिल चाहता है ने गोवा टूरिज्म को एक नया पॉप कल्चर फेस दे दिया था. 25 years later, हम बदल गए, relationships बदल गई, technology बदल गई, but somewhere between दिल चाहता है, this movie still knows na exactly what a generation feels, and that is what the vision Farhan Akhtar had. As a directorial debut, ये movie ने तो कमाल कर दिया था. Happy 25 years to a film that didn't just define friendship, it made an entire generation want to take that Goa trip with their friends. मैं हूँ आफरीन आपके साथ, and ये गाना तो बनता है ना मस्त. शंकर महादेवन की, महादेवन की आवाज और दिल चाहता है का टाइटल ट्रैक ऑन विच इट्स हॉट.
2: दिल चाह

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। टीएनसी अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

उदित नारायण की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और देखिए भाई, कभी कभार कुछ चीजें आपकी जिंदगी में आपको लगता होगा कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर आप रियलाइज करोगे कि यार ऊपर वाले का शुक्र है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और देखिए, आज सुबह सुबह मैं ऑफिस को आ रही थी और ऐसा लगता है कि यार जब भी आपके साथ कुछ शायद गलत होने वाला होता है ना, तो ये ना एक ब्लेसिंग भी हो सकती है कि नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाले ने लाख लाख आपको बचा लिया, क्योंकि ऊपर वाले के प्लान्स कुछ और होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ सुबह सुबह, जहाँ पर थोड़ा सा मेरी गाड़ी का आज एक्सीडेंट हो गया। और मैं ऑब्वियसली सुबह के दिन की शुरुआत जब ऐसे हो तो आप थोड़े से हिल जाते हो, अरे क्या हो गया और क्या ये दिन की शुरुआत हो गई और क्या ये ऐसे क्या ही चल रहा है। बट देन यू लेटर ऑन रियलाइज कि चलो ठीक है, जो भी होता है छोटे में निपट गया है, ये सोच के आपको बस ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट हैज व्हाट इन ग्रैटिट्यूड इन मी टुडे। और बस ये मेरे जिंदगी का या मेरे दिन का एक छोटा सा मोमेंट है जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, शायद आप भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, खुश रहो और बस ऊपर वाले का शुक्रिया हमेशा करते रहो। जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
3: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
2: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हैट ओ हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट। 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah.

Well, देव नेगी पलक मुशल की आवाज में साथ देते हुए द 90s के ओजीस कुमार सानू और अलका याग्निक और मिर्ची, मैं हूँ आफरीन आपके साथ ऑन 89.6 मिर्ची वन। देखो, रीमिक्स करते हो अगर 90s के गाने या क्लासिक गानों के, तो यार ढंग से किया करो। ये वाला फिर भी ठीक था, लेकिन जब आप छेड़छाड़ कर लेते हो ना, तो यार बिल्कुल भी एकदम दिल जैसे ना एकदम बैठ सा जाता है। एंड आई एम एब्सोल्युटली नॉट इन फेवर कि भाई आप इतने अच्छे ओरिजिनल जो गाने हैं उसके साथ आप उठाकर छेड़खानी करते हो। 90s में भी होता था, आई रिमेम्बर बॉम्बे वाइकिंग्स के कितने सारे ऐसे गाने आते थे, क्या सूरत है एंड सो मेनी मोर, है ना। एंड देन ऑल्सो आई रिमेम्बर बाली सबू का ही था, नीले नीले अंबर पर, सच ब्यूटिफुल सॉन्ग्स जो रेट्रो गाने थे जिसका बहुत अच्छे से ये लोग रिमिक्स करके हमें पेश करते थे। एट वॉज अ गुड वर्क ऑफ म्यूजिक, बट अब का जेन जी म्यूजिक थोड़ा सा छेड़खानी मत करो, यही कहना चाहूंगी। इफ यू ऑल्सो एग्री विथ मी, ड्रॉप इन अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप 5001896। मीनवाइल ये जो म्यूजिक की बातें, बॉलीवुड की बातें, कतर की बातें, आफरीन की तो नॉन स्टॉप चलती ही रहती है, और कहीं ना कहीं इस पर ब्रेक लाना तो जरूरी है ना। अंबर पर सच ब्यूटिफुल सॉन्ग्स जो रेट्रो गाने थे जिसका बहुत अच्छे से ये लोग रिमिक्स करके हमें पेश करते थे। एट वॉज अ गुड वर्क ऑफ म्यूजिक, बट अब का जेन जी म्यूजिक थोड़ा सा छेड़खानी मत करो, यही कहना चाहूंगी। इफ यू ऑल्सो एग्री विथ मी, ड्रॉप इन अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप 5001896। मीनवाइल ये जो म्यूजिक की बातें, बॉलीवुड की बातें, कतर की बातें

0: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
1: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
0: वेल, ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा, अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

0: Well, Ayushman Khurana ki khubsurat si awaaz and what a lovely track it is. Pata hai kya? Vicky Donor film mein ye gaana aaya tha and uske baad Vicky Donor mein humne Ayushman Khurana ki kamaal ki acting dekhi thi along with Yami Gautam. Ab yahan par main aapko ek baat batana chahungi. Jab is shakhs ko maine perform karte hue dekha tha, act karte hue dekha tha, ek pal ke liye feel hua tha, realize hua tha ki bhai jab koi insaan pure dil se apni performance deta hai na, to uska impact bahut alag hota hai. And Ayushman Khurana apne aap mein ek aisa artist hai jo bahut achhi tarah se janta hai ki lobbying ke zariye nahi, किसी और तरीके से नहीं, बल्कि अपने काम से लोगों के दिल में घर जो है बनाया जाए और कैसे बनाया जाए. चलिए जी, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:11.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे आयुष्मान खुराना की गजब की दास्तान तो इस वक्त मैंने आपके बीच पेश कर दी, लेकिन इस वक्त आपके बीच कोई और कहानी भी पेश कर ही दी जाए.
2: मिर्ची अंशु
0: देखो, इस बात में दम है एंड बड़ा कमाल का दम है. सबसे पहले जितने लोग इस वक्त मेरे साथ मीठी मिर्ची में जुड़े हैं, आपका दिल से स्वागत. आई एम प्रीटी श्योर दिन की शुरुआत तो आपकी हो ही चुकी है, ऑफिस के लिए निकल चुके हैं एंड इस वक्त अगर आप कहीं जा रहे हैं तो शायद मीटिंग्स के लिए निकले होंगे, या तो फिर घर पे सारा काम निपटाने के बाद वो किटी पार्टी की एक पलटन या टोली निकली होगी, या तो मैं यूँ कहती हूँ कि आप ऑलरेडी मीटिंग्स के अलावा एक चाय के ब्रेक के लिए निकल ही गए. देखो भाई, जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी काम से जा रहे हो, इतना ही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि अभी आपका दिन जो है ना आज का बड़ा कमाल एंड बड़ा गजब बीते एंड जिंदगी का हर एक दिन जो है ना कमाल एंड अच्छी तरह से ही बीतना चाहिए. लेकिन अगर वक्त के बीतने की मैं बात करूँ, भाई साहब ये समर वेकेशन वाले दिन कितने जल्दी एंड कितने फटाफट निकल रहे हैं. ऑलरेडी अगर आप इस पूरी की जर्नी को देखने की कोशिश करेंगे तो जुलाई का महीना तो पूरा हो ही चुका है एंड इस वक्त अगर हम किसी मंथ में पहुंच चुके हैं तो वह अगस्त, एंड अगस्त भी आधा पूरा होते हुए 15 दिन रिमेनिंग है इस बात की दस्तक हमारी जिंदगी में दे दिया है. बढ़िया यार, गर्मी को देखते हुए खुशी हो रही है कि चलो जी गर्मी का मौसम जो है जल्दी जल्दी निकल रहा है, लेकिन जब वेकेशन का ये मूड खत्म हो रहा है ना तो ऐसा लग रहा है नहीं यार, मतलब घर पे बच्चों के साथ जिस तरह का वक्त मिल रहा है, थोड़ा रिलैक्स्ड मूड चल रहा है, वो सुबह की जद्दोजहद नहीं, उठना है, टिफिन बनाना है, ये सब करना है तो कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो रहा है कि भाई नहीं यार थोड़ा और धीरे हो. लेकिन मुझे ये भी पता है कि कईयों को ये भी लग रहा है कि भाई स्कूल खुले, एंजॉय है बच्चे स्कूल, जरा घर पे थोड़ी राहत आए. बढ़िया यार, वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता है ना. हमारे ज़माने में एक दौर होता था जब माँ बाप इस बात की दरख्वास्त किया करते थे कि कुछ हो ना हो तुम ना कभी घर पे नज़र आ जाया करो. मतलब हम सबको घर के अंदर लाना कितना मुश्किल होता था यार, जब तक वो बैट लेकर दादाजी घर के बाहर ना आए ना हम तो घर पे ना आते थे. लेकिन आज के डेट में उन्हीं बच्चों को घर से बाहर निकालना कितना मुश्किल हो गया है. वक्त वक्त की बात. चलिए जी, संजू राठौड़ की आवाज में एक पावर पैक गाना आपको सुनाते हैं एंड इस शो की शुरुआत करते हैं. एंड इस वक्त अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं एंड जितनी बातें मैंने कही हैं उससे आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जल्दी से गुड मॉर्निंग वाला मैसेज हो जाए. ईगरली वेटिंग यार, 5000 1896 ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ, आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स, तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
1: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ, एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा, अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे, तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
1: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
2: हाँ बताइए।
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना?
2: वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
2: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
1: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना, अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल
1: से कम मुझे
2: बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: जा कहाँ रहा है?
2: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है, और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
2: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
1: यार क्या बात कर रहा
2: हूँ, नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
1: क्या
2: यार बात सुनिए आप मेरी, मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

0: बस जोश प्रार की खूबसूरत सी आवाज परंपरा टंडन का साथ है। क्या प्यारा सा गाना है यार। देखो फिल्म बागी 4 में कुछ हो या ना हो, आई मीन अच्छे की बात कर रही हूँ लेकिन यार ये गाना जो है ये बड़ा कमाल है।
1: मिर्ची अंशु
0: लेकिन अच्छे अच्छों को पानी किस तरह से पिलाना है ये बंदी जो है ये बात जरूर जानती है। अरे नाना यार आपकी अंशु की बात नहीं कर रही, हम ऐसे काम नहीं करते, हम तो आपके दिल में पूरी तरह से बसने का काम करते हैं। लेकिन हाँ आपके दिल में क्या है ये बात मैं जान पाऊँ या ना जान पाऊँ, लेकिन कोई और हैं जो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। भाई एक बात समझो, जिस शख्स ने एक बार खुद से कमिटमेंट कर ली उसके बाद जो खुद भी नहीं सुनता, लेकिन उसके कमिटमेंट में आखिरकार क्या ही कमिटेड है, या ये खुद कभी कमिट होंगे या नहीं होंगे ये ना समझ पाए, लेकिन ये बंदी सवाल का जवाब दे दी। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया की द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट यानी कि सुहानी शाह, जो कतर में पहली बार दस्तक देने जा रहे हैं 25th ऑफ सितंबर को एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। आपके फेवरेट और हमारे रेडियो स्टेशन यानी कि मिर्ची वन कतर की पेशकश जो कि आपकी जिंदगी में है। देखिए बात नहीं है कि सलमान खान से बात करते करते कुछ इस तरह से पकड़ लिया कि उन्हें कुछ ऐसे इमेजिनेशन के मोड में डाला कि भैया उनके दिमाग में उड़ता हुआ घोड़ा है, उस परिंदे को वो खुद ना पकड़ पाए, लेकिन सुहानी जो है बहुत आसानी से पकड़ पाई। एंड उसके बाद अगर सलमान की जुबान से कोई बात निकली तो बस यही, ये किया कैसे। सल्लू भाई से हम भी जो है ना ये बात अक्सर पूछ ही लेते हैं, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं कि ये किया कैसे वैसे ये क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, शादी कभी करेंगे या ना करेंगे। सुहानी जो है इन सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छी तरह से बता पाती हैं। अगर अब तक आपने सुहानी शाह कौन है, इंडिया की सबसे बड़ी मैजिशियन मेंटलिस्ट कौन है, अगर आप इन्हें नहीं जानते तो प्लीज जाएं सुहानी शाह ये टाइप करें एंड यू विल हैव एम्पल इन्फॉर्मेशन अबाउट हर एंड आफ्टरवर्ड्स यू वुड नॉट वॉन्ट टू मिस दिस सेगमेंट दिस सेशन एट ऑल। चलिए इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स अवेल करने का मौका है। आपको स्नूनू एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करना है, स्नूनू सिटी पर जाना है एंड वहां पर फटाफट से टिकट्स बुक कर लेनी है, जहां पे हर एक कैटेगरी में आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भैया ये जो डिस्काउंट्स हैं ये ओनली वन टाइम ऑफर है। अगर आप सोचें ना कि इवन के करीब आते आते कोई और ऑफर होगा, ना बाबा, तब ना आपको बस टिकट ऑफर नहीं होगी, ये बात समझ जाइए। इनफैक्ट इस वक्त आप 160 रियाल्स में 2 टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। जाओ यार खुद की टिकट बुक करो, दोस्त यार की टिकट भी बुक करो। ऐसे इवेंट्स जो है परिवार दोस्त यार के साथ देखने में मजा आता है, परिवार के साथ तो सही, यारों के साथ ज्यादा बंधु। कविता सेठ की आवाज, नीरज श्रीधर का साथ। इन सभी बंधुओं के लिए अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,

0: Papa John's. Enjoy double delight offer.
1: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66, and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Smile partner, Naseem Dental Center. Har smile ho perfect. Sirf Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia, your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. Google आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, Instagram आपकी लाइक्स, Netflix आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
2: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Well, Harnoor and Shreya Ghoshal ki khubsurat si awaaz, and what a lovely track it is from the film Bhoot Bangla. I absolutely love this track, man. Ye pyara sa gaana to maine aapko suna diya, lekin ek bahut khubsurat bhi baat bhi is waqt aapke beech pesh ho jaye.
1: Mirchi Anshu.
0: यार देखो, हम ना जैसे होते हैं, हम जिस तरह से सोचते हैं, हम जिस तरह की हरकतें करते हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ अगर किसी का होता है तो वो है हमारी परवरिश का. बचपन से जो संस्कार हमें दिए गए हैं या हमने जो देखा है, वो बहुत बड़े लेवल पे डिफाइन करता है कि हमारी सोच होगी तो होगी कैसे, और आने वाले दिनों में हम दुनिया को जिस भी नज़रिए से देखेंगे. जितने भी लोग मुझे रेगुलरली सुनते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरी लाइफ में अगर सबसे बड़ा इंक्लिनेशन किसी का रहा है तो वो है मेरे पापा का. वो जिस तरह से चलते थे, वो जिस तरह से बोलते थे, यू नो, वो जिस तरह से अपने आप को कैरी करते थे, हर बार जब मैं उन्हें देखती थी तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता था कि मैं अपने पापा की बेटी हूँ. आज वो मेरे बीच दुनिया में फिज़िकली मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी उनकी बताई हुई बातें मेरी ज़िंदगी को ड्राइव करने में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. इनफैक्ट पापा को देखकर ना मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि हाँ, मुझे इन्हीं की तरह बोलना है, मुझे इन्हीं की तरह चलना है, मुझे इन्हीं की तरह दिखना है, ऐसे कपड़े पहने, यू नो, द वे ही यूज़ टू कैरी हिमसेल्फ, सो सोफिस्टिकेटेड, सो डिग्निफाइड ऑल द टाइम. लेकिन सब बातों के अलावा, पापा की पर्सनालिटी के अलावा, पापा की सबसे अच्छी बात ये थी कि पापा ना एक बहुत अच्छे लेखक हुआ करते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे. ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ हिंदी लिटरेचर, ही वॉज मास्टर्स इन 12 सब्जेक्ट्स, PhD, LLB, बहुत सारी बातें. अब इन सभी स्टडीज़ के बीच पापा ना अक्सर अपनी ज़िंदगी की खास बातें हमसे शेयर किया करते थे. एंड एक बार मेरे पापा ने ना मुझसे कहा था कि बेटा, अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से जियो कि तुम्हारी ज़िंदगी मीनिंगफुल बने. और अगर मैं मीनिंगफुल की डेफिनेशन पूछने की कोशिश करूँ तो पापा मुझसे यही कहते थे कि ज़िंदगी के मायने तुम्हारे लिए तो अच्छे हों, कि तुम अपने ख्यालों से, अपने सोच से, अपनी एक्टिविटी से खुद की ज़िंदगी को अच्छा और आसान बना सको, लेकिन तुम्हारी हरकतें जो हैं वो औरों की ज़िंदगी में भी किसी ना किसी तरह से मददगार हो. एंड इस बात को समझाते हुए उन्होंने मुझे यही कहा कि जब भी किसी से मिलो तो कुछ इस तरह से मिलो कि कुछ और नहीं तो उनके कलेजे में, उनके चेहरे पे कम से कम तुम एक मुस्कान ला सको. कई बार हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं. पापा की एक लाइन है जो मैं आपके बीच पेश करना चाहूँगी. उन्होंने लिखा है, किसी की 4 दिन की ज़िंदगी में 100 काम होते हैं. किसी की 4 दिन की ज़िंदगी में 100 काम होते हैं, और किसी का उम्र भर का जीना भी बेकार होता है. किसी के एक आंसू पर लाखों दिल तड़पते हैं, और किसी का उम्र भर का जीना भी बेकार होता है. तो भाई, जिंदगी को किस तरह से जीना है, ये अगर किसी के हाथ में है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे हाथ में है. हमारी जिंदगी खुद के लिए और औरों के लिए कितनी खुशनुमा हो, ये तो हम ही डिफाइन कर सकते हैं. चलिए, ये बात अच्छी लगी तो एक थैंक यू मैसेज तो बनता है मेरे पापा के नाम. 5000186, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम @mirchi1kataria mirchi anshu. मीनवाइल, आई पिसिंग जोनिता गांधी की आवाज़ में इस वक्त एक पावर पैक गाना आप तक. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु. अच्छा.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ but I can't, but if I were to I would, you know there are people, it's unbelievable। कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे, तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क, हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट इजी।
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है, इट इज वेरी इजी टू ट्रोल बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's hot
4: It's all down to Dhoni isn't it 4 balls left they need 12 runs to win
5: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala lekin use pata hai Salman Khan abhi apne farm house mein horse riding ke bare mein soch rahe hain
6: ya are you thinking of like a flying carpet are you thinking of flying carpet
7: kaise kiya seriously kaise kiya ye
5: use sab pata hai Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah, live.

0: दर्शन रावल एंड रोचक कोहली की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज जॉनिता गांधी का साथ फिल्म का नाम धड़क 2 एंड आई एम इन एब्सोल्यूट लव विद दिस ट्रैक। देखिए इस वक्त ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया लेकिन कोई खास बात है जो जल्दी से इस वक्त आप तक पहुंचा दी जाए।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो बात इतनी यार, कतर में जब भी कोई चीज खास और एक्साइटिंग होती है ना तो मेरा दिल जो है खुशी से वो गदगदन गार्डन गार्डन होने लगता है। एंड इस वक्त अगर आप कतर को देखने की कोशिश करें तो इतना समझ जाएं कि अगला महीना कुछ इस तरह का होगा कि फाइनली इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट के बाहर एक बार फिर से हमारी जिंदगी में आएगी। भाई सितंबर यानी कि एक ऐसा मंथ जहां पे हमें ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि कतर का कोना कोना जो है बज होने लगा है। सबसे ज्यादा बसेस नजर आती हैं, स्पेसिफिकली अगर आप सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हो तो ये बात तय हो जाती है कि घर से निकलना है तो 15 से 20 मिनट आप एक्स्ट्रा निकलना शुरू करना है। बच्चे जो हैं जिस तरह से रोड्स में पूरा का पूरा कब्जा करते हैं। चलिए जहां पे एक तरफ स्कूल्स के एक्टिवेशन शुरू होंगे वहीं दूसरी तरफ अगर इवेंट्स एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की मैं बात करूं तो वहां पर भी आप बहुत कुछ देख पाएंगे। वर्ल्ड क्लास शेफ स्पॉटिंग इवेंट्स की बात करें, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स की बात करें, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, सितंबर इज गोइंग टू बी द मंथ जहां पे एक बार फिर से कतर में बहुत कुछ होगा। लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा खजाना म्यूजिक के चलते, आपको मैजिक वर्ल्ड में ले जाने के चलते ये सारा काम भी कतर में किया जाएगा। बट एक बात इतना बता दूं, सबसे एक्साइटिंग सारे के सारे एक्सपीरियंसेस की बात करें जो इन एक्सपीरियंसेस को रिवॉर्ड देता है तो वो है कतर टूरिज्म। एंड इतना ध्यान रखें 16th ऑफ सितंबर जो है कतर टूरिज्म अवार्ड्स की एंट्री की लास्ट डेट है। मतलब इवेंट्स इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, टूरिज्म सेक्टर में आपने जितना भी अच्छा काम किया है अगर आपको लगता है कि उसके लिए रिकॉग्निशन बिल्कुल आपका बनता है तो फटाफट से कतर टूरिज्म अवार्ड्स में अप्लाई करने की तैयारी कर लीजिए। 16th ऑफ सितंबर इज द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर यू मिस आउट। अंशु ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचा दी है। अवार्ड मिले तो मुझे भूलना मत। चलो लेकिन अब मैं अगले आवर तक पहुंचूं, दिल जो यही कह रहा है उसे तो नहीं भूल सकते। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक इट इज़ यार. मतलब कुछ गाने बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके दिल में असर किस तरह से करें, ये जो गाना है ना वो ज़रूर है.
1: मिर्ची अंशु
0: यार सच कहूँ, मेरी ज़िंदगी में ना फिल्मों ने, म्यूज़िक ने बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा किरदार निभाया है. एंड खासकर कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप जब स्क्रीन में देखते हैं ना तो एक ऑर्गेनिक सी फीलिंग आती है आपके अंदर जो कहीं ना कहीं आपको खुद को ट्रांसफॉर्म होने में मजबूर करती है, या ना यूँ कहूँ कुछ इंस्पायर करती है. चलिए इस वक्त ना मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. तो जैसे कि आपको मालूम है, मतलब मैंने बताई थी ये बात कि मैं चेन्नई गई थी इस वीकेंड. आई वॉज इन चेन्नई फॉर वन ऑफ माई इवेंट्स. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा इवेंट था. एंड उस इवेंट के दौरान मुझे मौका मिला कि अगर मैं किसी शख्स से मिल सकूँ तो वो है आर माधवन. उनका एक पॉडकास्ट था, एक सेशन था, एंड आई वॉज एबल टू विटनेस इट लाइव. यार माधवन को ना हम एक बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार के तौर पर जानते हैं, एक ऐसे एक्टर के तौर पर जानते हैं कि जब जब जो स्क्रीन पर आते हैं तो पूरी तरह से अपने आप को झोंक कैसे देना है, ये शख्स से बात बहुत अच्छी तरह से जानता है. लेकिन पता है, माधवन को सुनने के बाद, तकरीबन 1.5 घंटे तक उनके सेशन को अटेंड करने के बाद एंड उनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन करने के बाद एक बात समझ में आई कि भाई ना ही सिर्फ ये शख्स पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करता है, लेकिन जितनी रिसर्च इसने अपनी ज़िंदगी में अपने हर एक किरदार को लेकर की है ना यार, वी कांट इवन विजुअलाइज और इमेजिन दैट. कहते हैं ना यार, अपने काम को जब आप ऑनेस्टी के साथ करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा आता है, डेडिकेशन के साथ करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन जब आप अपने काम की वर्शिप करते हैं ना, पूजा करते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं, झोंक देते हैं, तो हो सकता है मोमेंटरली उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिले ना मिले, लेकिन जब बाद में मिलता है ना वो छप्पर फाड़ के मिलता है. एंड ये बात सही मायने में किसी की ज़िंदगी बयां करती है ना, तो वो है आर माधवन. लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है पता है, इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया है, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से किया है, लेकिन आज मीना जब आप इनसे मिलते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, ही सो लाइवली, ही सो फुल ऑफ लाइफ एंड ही इज एग्जैक्टली हाउ ही अपीयर्स ऑन स्क्रीन. उतने ही हम्बल हैं, उतने ही डाउन टू अर्थ हैं, उतने ही कमाल के वक्ता हैं. एंड जब आपसे बात करते हैं ना, आप इंस्टेंट कनेक्ट फील कर पाते हैं. मतलब आज की डेट में जब हम सभी इतने सारे मास्क लेकर घूमते हैं, हर किसी शख्स के आगे हमारा एक अलग मुखौटा होता है, यार आर माधवन को मिलने के बाद और उसे देखने के बाद मैंने एक बात सीखी है, भाई जो तुम जैसे अंदर हो ना, वैसे जब तुम बाहर भी होते हो ना, तो दुनिया जो है इस बात को फील कर पाती है एंड बहुत अच्छी तरह से फील कर पाती है. सो आई हैड अ फैबुलस एक्सपीरियंस लिसनिंग टू हिज सेशन, टॉकिंग टू हिम, इंटरेक्टिंग विथ हिम. लेकिन अब एक काम करती हूँ, चूँकि इनकी बात कही है तो क्यों ना इनकी इस फिल्म से एक बहुत प्यारा सा गाना इस वक्त मैं आप तक पहुँचाती हूँ. एन्जॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
4: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा
4: है? मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

यार मुझे एक बात लगती है कि अगर किसी के पास ये हुनर हो कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को पकड़ सके, तो सबसे पहले दुनिया में किस किरदार की वाट लगेगी, जरा सोचें। मिर्ची अंशु यार अब की बार तो बात तय है कि हस्बैंड से ज्यादा वाइफ्स की वाट लगने वाली है, क्योंकि अगर हस्बैंड ये बात को एनालाइज कर ले कि उसकी बीवी के दिमाग में क्या चल रहा है ना, अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगे, तो क्या है ना हमारे पास लड़ाई करने की कोई वजह बचे ना। एंड जब तक ये हम ना करें हमारा खाना हजम हो तो कैसे हो? अंशु आपसे यही कहना चाह रही है कि 25th ऑफ सितंबर को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में कुछ ऐसा ही होने वाला है। वेल इंडिया की लेजेंडरी मेंटलिस्ट सुहानी शाह आ रही हैं दोहा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड ये कोई सिर्फ मैजिक शो नहीं है, ये सिर्फ एल्यूशन भी नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके बाद आप बस एक ही बात बोलेंगे, भाई ये किया कैसे, सिखा के जाओ प्लीज। इस वक्त अगर आप देखने की कोशिश करें तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑन गोइंग है, जिसके चलते 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं ऑन योर टिकट बुकिंग। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से स्नूरो एप्लीकेशन को अपने फोन पर डाउनलोड करें, एस सिटी विजिट करें एंड अपनी टिकट्स जल्दी से सिक्योर करें। इनफैक्ट 160 रियाल्स में आपको दो टिकट्स भी मिल रही हैं, भाई गजब फायदे का सौदा है, बाद में कहना मत मेरे दिमाग में तो था जाने का। आ रही है वो, आपके दिमाग के हाल को पहले से जानती है। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: जी सरकार, ऐसा लगता है कि मेरी आवाज जो है आप तक पहुंचने के पहले कहीं तो अटक गई थी। कोई नहीं जी, एक बार फिर से दस्तक देते हैं इसे।
1: मिर्ची अंशु।
0: हाँ जी, ये हुई ना बात। अरे आपकी जिंदगी में आएंगे तो सॉलिड तरह से दस्तक देते हुए आएंगे। आप हैं इतने खास, इसलिए तो जब जब बात होती है आपकी मैं जो ना थोड़ी ज्यादा कॉशियस हो जाती हूँ। देखो भाई, इस वक्त अगर लाइफ में कुछ सॉलिड चल रहा है ना, तो वो है गर्मी का बड़ा वाला प्रकोप। बचपन में ये बातें हम अक्सर सुना करते थे कि भाई गर्मी जो है अपनी चरम परम सीमा में पहुंच गई है, लेकिन इसे महसूस करना किसे कहते हैं ये बात जो है ना मुझे कतर ने सिखाई है। लेकिन यार एक बात कहूँ, उन दिनों से अगर आज की अपनी लाइफ को कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो सब कुछ बहुत अलग है। मतलब सनस्क्रीन नाम का ये जो खर्चा है ना, बहुत बड़ा खर्चा, नहीं मैं तो उसे इसी नाम से जानती हूँ, हमारी ज़िंदगी में उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपको याद है, मतलब लाइफ में मैंने अगर अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल कॉलेज टाइम्स में कुछ किया है तो बहुत अच्छी तरह से याद है। वो एक दुपट्टा होता था जिसे पूरे सर से लेके चेहरे से लेके टाइट टाइट मैं बांधती थी। एंड साथ में दादी ये कहती थी कि कभी भी ना डार्क कलर का दुपट्टा मत बांधना, उससे ना सन जो है ज़्यादा आएगा, एकदम लाइट। तो हम ना सफ़ेद कलर का दुपट्टा लेते थे। एंड उसके बाद मार्केट में वो बड़े बड़े ग्लव्स मिलने लगे, या पूरे हाथ को कवर करने के लिए हम वो ग्लव्स पहनने लगे, और हमें ऐसा लगता था कि पूरा सन प्रोटेक्शन जो है वो 101% हो गया। एंड उसके बाद भी अगर जरा सा ऐसा कुछ लगता था कि टैनिंग हो गई है, ऐसा कुछ हो गई है, तो मम्मी का वो बेसन का उपटन, मतलब देखो एक दिन में 6 महीने की टैनिंग जो है ना किस तरह से कमाल निकालता था। एंड हाय, चेहरे में जो चमक आती थी, शाइन आती थी, अब उसके बारे में बताएं तो क्या ही बताएं। तो भैया उस वक्त 25 रुपए का साबुन, उपटन एंड ये हमारा मास्क हमारी जिंदगी में ना सारे सनस्क्रीन का, या कहूं मैं तो पर्दे का काम जो है कर ही देता था। लेकिन आज की डेट में भाई साहब आप देखने की कोशिश करें, 25 रियाल क्या, लोग बाग 250-300 रियाल के सनस्क्रीन खरीदते हैं। एंड उसके बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं डर होता है कि भैया हम जो है सन से प्रोटेक्टेड तो रहेंगे ना, लड़कियां तो लड़कियां, हमने अपने चाचा ताऊ पापा को कभी ऐसा कुछ करते हुए ना देखा। आज की डेट में लड़के हमारे सनस्क्रीन को ऐसे लगाते हैं जैसे कि वो 25 रुपए का साबुन है, कभी देखिएगा अपने घर पे। वेल, इतना ही कहना चाहूँगी, सनस्क्रीन इज अ मैंडेट हियर इन दोहा, लेकिन जितनी केयर आप अपनी स्किन की करते हैं ना, उतनी ही केयर अपनी बॉडी की करें। गर्मी के दिनों में खुद को हाइड्रेटेड रखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड हाइड्रेशन की बात हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप शामिल कर लेना तो बॉडी का टेम्परेचर है वो पूरी तरह से बना रहेगा। नींबू पानी की मैं बात करूं, जैसे हम नींबू की शिकंजी कहते हैं, छाछ की बात करूं यानी कि बटर मिल्क की बात करूं, या तो कच्चे आम का पन्ना, कच्चा आम लाना है, बॉईल करना है एंड बस उसे पीस के उसमें नमक शक्कर जो डालना है डाल के पीजिए, इससे बड़ा इलेक्ट्रोलाइट या हाइड्रेट जो है आपकी ज़िंदगी में हो नहीं सकता। चलिए इन सब चीज़ों को लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते रहें। बाकी आपके कलेजे के ठंडक के लिए मैं हूँ ना हबीबी, टक्के बने रहो, सुनते रहो कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑल एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
3: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देख के लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
2: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now. Dekho

0: अनुप जैन की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज भाई. ये बंदा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अपनी आवाज से किसी को मदहोश कैसे किया जाए यार, है ना.
1: मिर्ची अंशु
0: देखो, मधुमोशी के चक्कर में ना अपने दिमाग की बत्ती जो है वो कभी जलाना जो है तुम नहीं भूलना. नहीं, सिर्फ एक प्यारा सा, खूबसूरत सा, एक्साइटिंग सा रिमाइंडर है. बोल इतना बता दूं कि रात के समय जब रोड खाली हो तो गाड़ी चलाने का मज़ा है, अलग मज़ा है. एंड ऐसा लगता है कि हमारे सिवा कोई और है तो है ही कौन भैया, हम जो है पूरे के पूरे रास्ते के राजा हैं. नहीं, मैं तो दिन में कभी भी चलाऊँ खुद को यही समझती हूँ, इसीलिए घर वाले मुझे गाड़ी जो है कभी चलाने ही नहीं देते. लेकिन सुने, अगर आपको लगता है कि आपको भी अच्छी तरह से गाड़ी चलाने का शौक है, ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग की बत्ती कुछ इस तरह से जल रही कि बाकी जले ना जले क्या ही फर्क पड़ता है, तो ज़्यादा नहीं 10,000 तक का फाइन बस देने को तैयार हो जाओ यार, बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास. ये बात मैं नहीं कर रही हूं, ये बात MOI बोल रही है. भैया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सीधा मोटरिस्ट को ये चेतावनी दी है कि अगर आपको लगता है कि आप रात के वक्त गाड़ी चला रहे हैं एंड अंधेरे में, हाय नहीं, मतलब गाड़ी चलाना अच्छा लगता है कुछ और नहीं, तो जरा सतर्क रहें, संभल कर रहें, क्योंकि अगर आपकी व्हीकल की लाइट स्विच ऑन नहीं है तो तुम्हारे पॉकेट से कुछ ना कुछ तो स्विच ऑफ जरूर होगा एंड वो होगा अ फाइन अप टू 10,000 रियाल्स एंड मच मोर एंड बियॉन्ड. भैया, इतने पैसे मैं तो किसी को दे दो, लोग दुआएं देंगे, तुम्हारा और अच्छा होगा, बरकत होगी, ऐसी हरकतें क्यों ही करना. संभल के चलाएं यार, सेफ्टी जो है ना ये सब फन मस्ती मजाक नहीं, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आपकी जिंदगी के अलावा आपके साथ साथ औरों की जिंदगी भी जुड़ी हुई है. सेफ रहें, सिक्योर रहें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहें, बाकी मजे मस्ती कराने के लिए तो हम हैं ना आपकी जिंदगी में. स्टेडियम टू मिर्ची, इट्स हॉट. सुखी की आवाज़ में अगले घंटे में पहुंचने से पहले ये प्यारा सा गाना एंजॉय करते हैं, बंदी का नाम अंशु.

0: only on 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वाला अगर आवारेपन की बात करूं, आवारगी की बात करूं भाई, दिल इस वक्त सीधा अगर कहीं पहुंचता है ना तो वो है मेरे कॉलेज टाइम में।
2: मिर्ची अंशु
1: यार, मतलब जो आवारगी, जो मस्तियाँ, जो शरारतें हमने अपने स्कूल कॉलेज टाइम्स में किए ना यार, उन्हें शब्दों में इस वक्त बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। जिंदगी के सुनहरे पन्नों में, सुनहरे अक्षरों में जेन्युइनली अगर कुछ लिखा जाए, मैं अपनी लाइफ के सबसे सुनहरे दिनों की बात करूं, सो दैट इज़ माई स्कूल एंड कॉलेज टाइम। याद है यार वो वक्त जब इतनी बेफिक्री से हमारे पॉकेट में शायद पैसे नहीं होते थे, महज 50 या 60 रुपए होंगे, लेकिन उसमें भी हम जो है ना खुद को कितना राजा महसूस किया करते थे। वो कॉलेज का कैंटीन जहाँ पे ब्रेक होते ही सबसे पहले भाई पूरी की पूरी पलटन को पहुँचना है, उस एक डोसे में कुछ इस तरह से अटैक करना है कि एक निवाले में भी ना भाई आपका पेट जो है वो भर ही जाता था। वो एक बॉटल, चाहे वो पेप्सी की बोलो, मिरिंडा की बोलो, एंड हम जो है सारे के सारे लोग लाइन से तृप्त हुआ करते थे। घर से झूठ बोलकर, कॉलेज बंक कर मूवीज के लिए जाना, फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं बोल के बाहर पार्टीज करने जाना, पढ़ाई भी करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। हाँ, एग्जाम के एक दिन पहले, पेपर शुरू होने के पहले रास्ते में अपने फ्रेंड के साथ बाइक में बैठ कर जब तक टीचर क्लासरूम के बाहर नोटबुक ना ले ले तब तक पढ़ाई करना। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद यार, नंबर कम आए ज्यादा आए, जिंदगी को बस जीते चले जाना। पता है जब मैं उन दिनों को सोचने की कोशिश करूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जो बच्चा पढ़ने में कम अच्छा था या जो बहुत अच्छा था, आज की डेट में जब उनसे मिलती हूँ, हर कोई अपने अपनी मंजिल तक पहुँच चुका है यार। हर किसी ने अपने हिसाब से सब कुछ अचीव कर ही लिया है, लेकिन आज की डेट में हर किसी के पॉकेट में वो मोटी मोटी गद्दियाँ हैं, लेकिन क्या उन गड्डियों में वो सुनहरे दिन है, ये क्वेश्चन है। चलिए जी, लेकिन कोई तो सुनहरा सा एक्सपीरियंस है जो इस वक्त आपकी लाइफ में ज़रूर ले आती हूँ। अगर गड्डियाँ नोटों की हैं, लगता है कि अकाउंट के रंग को ज़रा सुनहरा करना है, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि आई पे मनी जो है इस वक्त आपकी लाइफ में खुशियों की बहार लेकर आए। अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज़ 26.14, पाकिस्तानी रुपीज़ 76.20, बांग्लादेशी टका 33.90, लंकन रुपीज़ मचाते हुए डंका विद 91.89 एंड नेपाली रुपीज़ 41.80। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: mystery. Periphery is empty and the rest is moved to history.
1: मिर्ची
2: नवीद
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूं फिर मुर्गा बनाऊं। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: हाँ, भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
1: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू। थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah.

0: Well, Varun Jain and Shilpa Rao ki khubsurat si awaaz and what a lovely track it is. Bas mere dil se ye gaana nikla hai, to tumhare liye nikla hai, tumhare the, tumhare hi rahenge. Mirchi Anshu. देखो हम जो हैं वो तो तुम्हारे हैं, लेकिन तुम हमारे कितने हो ये अब पता चले तो कैसे चले। देखो इसका मौका भी दूंगी, दस्तूर भी दूंगी। अंशु आ गई है आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर से खुशी की बहार लेते हुए, लेकिन जहाँ पे मैं बहार लेकर आई हूँ आप जो है कुछ अंदर भेजने की तैयारी करें, एंड वो है अपना जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 5000 1896, क्योंकि अब शुरू होता है दिन का वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग सेगमेंट्स, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सेगमेंट, जहाँ पे मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता चलती है कि ना मैं इकलौती नहीं हूँ जो स्टूडियो की चार दीवारी पे बैठ के सिर्फ बातें किए जा रही हूँ। कोई है जो मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हाय बेकरार बेसब्र है मुझसे बात करने के लिए। बोला आपसे पूछने वाली हूँ मैं आपको सवाल, उसको सुनना है, एनालाइज करना है, करेक्ट आंसर पहचानना है, फटाफट से अपनी आवाज के जरिए भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हिच इज 5000 1896 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। तो यह है एक बॉलीवुड की कॉन्वर्सेशन, बड़ी एक्साइटिंग है, बड़े ही फेवरेट एक्टर्स हैं, आइडेंटिफाई करें ये दो हैं तो हैं कौन, एंड साथ ही ये फिल्म है तो है कौन सी। 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर।
1: हालत देखिए अपनी, गोश्त हड्डी छोड़ रहा है, अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है।
2: हाँ तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? ऐसे था ना मैं?
1: ऐसे ही थे, ना कोई पर्सनालिटी ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर।
2: तो राजू श्रीवास्तव से शादी कर लेती? देखिए मैं स्टेबल लाइफ दे सकता हूँ, चुटकुले नहीं सुना सकता।
1: क्या चुटकुले सुनाएगा ये दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी है।
2: एक्साइटमेंट के लिए मैं क्या करूँ?
0: हाय बस तुम स्क्रीन के सामने आ जाओ, हमें तो सारी एक्साइटमेंट दिख जाएगी। वो तुम्हारी बीवी तुम्हें अदरक समझ रही है, अब क्या बताएं, हम तो जो है गुलाब समझते हैं। देवनेगी की आवाज में अगला गाना सुनाती हूँ, लेकिन तुम मुझे ये सुनाना कि ये कॉन्वर्सेशन है तो है किस फिल्म से। वेट कर रही हूँ यार, इंतजार। हाय सुनिए, एंजॉय। भिंडी का नाम अंशु।

0: Papa John's. Enjoy double delight offer.
1: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66, and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Smile partner, Naseem Dental Center. Har smile ho perfect. Sif Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia. Your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. Google आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, Instagram आपकी लाइक्स, Netflix आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC.
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ. गेट देम एट STD Snoo Noo. बुक योर्स नाउ.

0: वाला खिल सच देवन तुलसी कुमार की खूबसूरत सी आवाज एंड क्या खूबसूरत सा ये लेटर है, ये गाना नहीं, ये तो ये खत है यार, जो कबीर सिंह फिल्म में हमने सुना, पढ़ा नहीं, लेकिन इसके जो अल्फाज है ना, हमें उसी खत की याद दिलाते हैं जब शादी के पहले हर एक शख्स जो है कॉलेज टाइम के अफेयर में हर अपनी एक बिंदी को लिखा करता है। नहीं, इसके शब्द को एक बार फिर से ध्यान से महसूस करो और सुनो और तुम्हें रियलाइज होगा ये बस वही खत है।
1: मिर्ची अंशु
0: और इस वक्त तुमने जो चिट्ठी मुझ तक पहुंचाई है जरा उसकी भी बात हो जाए। वैसे मैंने कहा था कि अपनी आवाज के जरिए ऑडियो मैसेज का जमाना है यार, अगर रिप्लाईज भेजते तो ज्यादा खुशी होती, लेकिन कोई ना, तुमने जो भेजा मैंने उसे दिल से स्वीकार किया। से कुछ देर पहले आपने और हमने मिलकर खेला आज का बॉलीवुड वाला सरप्राइज टेस्ट, जहां पर एक डायलॉग, एक कॉन्वर्सेशन मैंने आपके बीच पेश की थी, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से एंड साथ ही किन एक्टर्स पर पिक्चराइज्ड है। नाउ फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, मैं जल्दी से इसे फिर से प्ले करती हूँ, सुनते सुनते भी लगे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो करेक्ट आंसर फाइव मेरे व्हाट्सएप के इनबॉक्स पर 5000 1896 5000 1896। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। सो हबीबी हियर यू गो। बहुत आसान है यार,
2: मैं क्या करूं, मैं नाच के दिखा सकता हूं।
3: अरे तुम क्या नाचोगे मनु शर्मा, हालत देखिए अपनी, गोश्त हड्डी छोड़ रहा है, अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है।
2: हां तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? ऐसे था ना,
3: ऐसे ही थे, ना कोई पर्सनालिटी ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर।
2: तो राजू श्रीवास्तव से शादी कर लेती। देखिए मैं स्टेबल लाइफ दे सकता हूँ, चुटकुले नहीं सुना सकता।
3: क्या चुटकुले सुनाएगा ये दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी है।
0: अरे ये घर घर की कहानी है, ये आदमी जैसा भी हो हमें बड़ा पसंद है। देखिए लोग बाग क्या कहते हैं, ये आदमी है तो है कौन।
4: हाय दिस इज शाहिद हियर, कंगना रनावत आर माधवन, द मूवी नेम इज तनुवेट्स मेनू मनु।
0: वेल आपने जो कहा ये पूरी तरह से सही, यूसुफ भाई आपने जो कहा वो भी पूरी तरह से सही, सुचिता अहमद गोपाल थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग माय कांस्टेंट लिसनर्स, अहमद एब्सोल्युटली डस करेक्ट, आप सबने सही कहा है, बस इन्होंने रिटर्न लगाना छोड़ दिया है। तनु वेट्स मनु रिटर्न से आपको मैंने ये डायलॉग की कॉन्वर्सेशन सुनाई। वेल देखिए अगर तनु वेट्स मनु की बात करूँ तो ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2011 में, इसे डायरेक्ट किया था आनंद राय साहब ने, लिखा था हिमांशु शर्मा ने एंड भाई कंगना रनौत एस तनु एंड माधवन एस मनु। हमारे लिए तो ये मैडी है यार, माधवन आया और मैं मैडी को याद ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यार ये जो कहानी है ना बड़ी ही सिंपल लगती है कि लंदन में सेटल्ड एक सीधा साधा सा डॉक्टर मनोज शर्मा इंडिया आता है शादी के लिए लड़की देखने, वहां इसको मिल जाती है हमारी तेज तर्रार यानी कि तनु। बस प्रॉब्लम यह है कि मनु को तनु से पहली नजर में प्यार हो जाता है, तनु को मनु बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर घर की कहानी येट अगेन, द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन इतना ही कहना चाहूंगी जब तनु विद्स मनु रिटर्न्स आई साल 2015 में सेम स्टार कास्ट के साथ, तब एक बड़ा ऐसा सवाल और अनकंफर्टेबल ट्रूथ बस यही था कि शादी के बाद क्या। देखिए अब ना इस बात पे जरा एनालिसिस हो जाए, अक्सर जिंदगी जो है ना शादी के पहले हमें बहुत सारे अलग रंग दिखाती है, वो नया नया प्यार, वो नया नया एरा, जब ऐसा लगता है कि हमारे दिल की जो भी ख्वाहिश है सामने वाला है ना बिना बोले सब कुछ समझ जाता है। लेकिन शादी के जब कुछ साल निकलते हैं 10-15 साल के बाद, दिल में एक ख्याल आता है कि यार रिश्ता आज भी वैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता जो है ना वैसा ही होता है, प्यार को इजहार करने का तरीका जो है वो बदल जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां जिंदगी में आती हैं, बहुत सारे नए रिश्ते जुड़ जाते हैं, तो उसके चलते शायद आप अपने रिलेशनशिप को सेम उस नज़र से नहीं देख सकते यार जो आपने 15 साल पहले देखा था। गलती जो है होती है और बस यही होती है एंड तकरार जो है ना बस वहीं से शुरू होता है। तो ज़रा एक बार केयर, कंसर्न, रेस्पेक्ट की नज़र से इस रिश्ते को और ज़्यादा गहराई से समझने देखने की कोशिश करें, फिर देखें 15 क्या 50 साल के बाद भी वही खूबसूरती आपको नज़र आ ही जाएगी। चलिए जी ज्ञान बहुत दे दिया, मेरी शादी को अभी इतने वक्त हुए नहीं है, अब एक अगला गाना सुना दूं मोहित चौहान की प्यारी सी आवाज़ में, एन्जॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी.
3: शाबाश. डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11.
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: शोर करता है.
3: शाबाश. लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलोसफी से?
4: गांधीयन.
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
4: पीके मेनन.
3: खादम.
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता. आदमी का नाम राजकुमार राव. रेडियो स्टेशन का मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah, live

0: और पैक आवाज फिल्म का नाम बार बार देखो से एक ऐसा गाना जिसे तुम बार बार सुनने में मजबूर हो जाते हो। ये तो मैंने तुम्हें सुना दिया, लेकिन मैं अपनी दास्तान भी सुना दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: यार सच कह रही हूँ, बार बार अगर मेरी यादें कहीं जाती है ना तो वो है नॉस्टैल्जिया में, यानी कि पुराने दिनों में। यार जब भी ना एक बजती है तो मेरा इशारा सबसे पहले अगर किसी चीज़ की ओर होता है तो तुम्हें पता है वो है खाना, यानी कि फूड, क्योंकि मुझे भूख लगनी शुरू हो जाती है। एंड एब्सोल्युटली अभी मेरा यही स्टेट है। लेकिन अगर बचपन के दिनों की बात करूँ ना, तुमको मालूम मेरा सबसे ज़्यादा वो पास टाइम स्नैक क्या हुआ करता था, या अगर घर पर खाने में कुछ भी नहीं है तो मुझे एक चीज़ अगर मिल जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो। सो दैट यूज़ टू बी गर्मा गर्म एक ग्लास दूध एंड साथ में पार्ले जी बिस्किट। ऑनेस्टली मतलब ये दो मेरी लाइफ के ऐसे कॉम्बिनेशन रहे हैं ना जिनसे मेरी जिंदगी बड़ी हुई है, मतलब मैं लिटरली बड़ी हुई हूँ यार ये खा खा कर। एंड साथ में वो अगर पार्ले जी नहीं है सो आई वुड वॉन्ट टू हैव मैरी बिस्किट, दूध, या तो फिर जो चाय पीते हैं चाय एंड ये बिस्किट का कॉम्बिनेशन। यार इन चीज़ों ने ना हमारे बचपन को डिफाइन किया है यार। आज की डेट में इतनी वैरायटीज़ हैं, इतने फ्लेवर्स हैं, लेकिन ये नाम ऐसे हुआ करते थे जो घर घर में बसा करते थे। एंड दिस हैज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ आर चाइल्डहुड रूटीन। आप में से कितने लोग ऐसे हो जिसने कभी चाय और ये बिस्किट खाई हो या दूध एंड पार्ले जी बिस्किट खाया हो, मुझे बताओ यार। 5000186। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम @mirchi1katariya mirchi anshu। वैसे अगर आज अपने लंच की मैं बात करूं तो मेरा चैप्टर जो है, प्लान जो है, बड़ा सेट है, डिसाइडेड है। आज मैंने बनाई है कढ़ाई पनीर। यस, बड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ, सच में बनाती हूँ। नहीं तब खिलाऊंगी जब तुम अपने घर में पॉटलक रखोगे और मैं एक डिश बना के आऊंगी, एंड साथ में चपाती गर्म गर्म तंदूरी वाली। तो मेरा लंच हो गया, प्लान सेट, अभी निकलो, भूख लग रही है, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ। अंटिल देन यू ऑल, यार ये रंग जो है ना बड़े सारे बड़े प्यारे हैं, आसमान को भी रंगी देते हैं। कविता सेठ एंड कनिष्क सेठ की आवाज़ में एंजॉय हबीबी। मसलामा, बंदी का नाम अंशु।

0: कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज़ जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीज़ों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज़। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। दिखा लगा ना, वाकई में लगा ना, मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La
1: virpa la burka. Milchi, burka. Hello.
2: Oh, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bank se bol le ho na, hamari nahi scheme aayi hai. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के
2: लिए? पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
1: मारूंगी ना।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
1: है।
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी,
1: सॉरी ना मैं, आई एम सॉरी।
3: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
1: कुकड़ो को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखने। नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी, लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म, ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल, क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी, ये सब थे। और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉलआउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही, लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई, ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा, लेकिन ऑनेस्टली पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ए गोली मार भेजे मैं, ये भेजा शोर करता है।

क्लास वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल क्योंकि मिर्ची लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल सेट योर ड्रीम्स सेट योर गोल्स कॉन्फिडेंस का टूल अब टाइम आ गया है सबको जाना होगा स्कूल सो ज्वाइन करो

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया. बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और सही जवाब है चाइना गेट. मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है. एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं. अगला इंसान कहता है नौने पौ. I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती. लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ, ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल. हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था. लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था. हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा. इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग. सर्दियों में हम भी यही करते हैं. हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शार नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
2: मैं करूँ?
3: आप करोगे?
2: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
3: तो वो तो पता है मेरा बस चलता है एक-एक को घुसड़ मार के आती हूँ
2: माय फ्रेंड हाउ आर यू माय फ्रेंड
1: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डर बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
4: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
6: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
1: वेल, ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा। अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस

सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर्स स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना, तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, बिकॉज बिना मेकअप ऑफकोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना, तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: Rambala.
0: Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल,
2: मालूम
3: से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूँ
2: मतलब
3: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
2: फोन मत करिए मैं इनबॉक्स बना दूंगा
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
6: उसे सब पता है लेडीज एंड जेंटलमैन योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: ये वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है. मोहित चौहान ने गाया, इतनी मस्ती में इस गाने को, आई स्वेयर. यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है, क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस. ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं, इस गाने की ताल पर नचा देता है.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान. अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं. तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं. गिव इट listen.

बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: check. Hey yo, this one is for all the little rock stars.
1: Vacation over हुआ है, अब जाना होगा school. Late morning उठने का बंद होगा rule. Bags on your shoulders, energy रखना full. क्योंकि मिर्ची लेके आ

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I'm not too sure आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन, जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
2: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हेड व्हिच आई एम नॉट श्योर हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
1: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Hi. Ye पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं?
1: आप कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास,
3: अरे यार
1: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे।
3: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
2: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रहे हैं? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
1: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
3: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूं यार? तू लाइन में आ रहा है? मैं लाइन में आ रहा हूं। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूं यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहां पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
1: है? तो
3: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर,
1: मुझे बात करने दे, पहले दो मिनट रुक जा।
3: तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai, ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala, lekin use pata hai. Salman Khan abhi apne farm house mein horse riding ke bare mein soch rahe hain.
6: Yeah, are you thinking of like a flying carpet? Are you thinking of flying carpet?
7: Kaise kiya, seriously? Kaise kiya ye?
5: Use sab pata hai. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: डियर आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हूँ ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप ही आते हैं मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे, और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में, तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर. खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए? अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार, तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा. पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: light offer.
1: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza. Smile partner, Naseem Dental Center. Her smile hope perfect. Sirf Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia, your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out.
2: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
4: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
6: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल,
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

0: कॉल बैक नाउ।
1: ये तबाह ही गाना आ गया विशाल मिश्रा की आवाज में, हमने सुना दिया नाम है हमारा। देखिए भाई, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जिंदगी को आबाद करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, और एक लोग जो तबाही लाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपकी जिंदगी में लाए तबाही। और मस्त बोला गौरव आपके साथ है, आपका भाई। मिर्ची घड़ी का टाइम 4:05 के करीब।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: Well, फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि एक ऐसा दिन जो आपकी और हमारी जिंदगी में एक नया एहसास लेकर आएगा वो है 25th of September. Yes, 25 September, एक ऐसी शाम जहां पर दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर में पहली बार होंगी, दिमाग को एकदम पढ़ लेती हैं और खोल कर रख देती हैं, और साथ ही कुछ म्यूजिकल सेंसेशन भी होगा। अब वो कौन है, कैसे है, सब कुछ पता लगेगा। हम बस इतना ही कहेंगे, समझ लो आपने सुहानी शाह के लिए पैसे खर्च किए और मजे दो दो चीज के मिलने वाले हैं। तो बस मोलो गौरव इतने कहेगा, एस सिटी स्नूनू पर जाकर जल्दी टिकट्स बुक करो। अब एक शाम में दो दो धमाके होने जा रहे हैं 89.6 मिर्ची वन पर। फिलहाल शाम शानदार की शुरुआत करते हैं मिर्ची थॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Ya bana. Burka, burka. La vie pa la burka. Mirci, burka.
1: Mirci.
2: Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी
1: जाते हैं। अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताता हूं।
1: ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है, मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah. Live

0: क्या समझ के आए थे कि लाइसेंस मिल जाएगा और प्रैक्टिस कर लोगे। अब वापसी घर जाने की प्रैक्टिस होगी।
1: #974974
0: हाँ जी, मैं आपको बता दूँ, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इस साल के पहले 6 मंथ्स की बात करें फर्स्ट हाफ की, तो लगभग 27 ऐसे लोगों को पकड़ा है जिन्होंने फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ यहां पर हेल्थ केयर लाइसेंस लेने का जुगाड़ बनाने की सोची थी, लेकिन पकड़े गए, धर लिए गए और अब फाइनली इनको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है। Yes, well, बता दे, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशंस के डायरेक्टर डॉक्टर साद अलकाबी साहब ने बताया कि एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की जब वेरिफिकेशन हुई तो पता लगा कि ये रजिस्ट्रेशन स्टेज में ही फेल हो रहे हैं, क्योंकि इन सब ने फेक और फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस जो है वो लगाई थी और ये इसीलिए पहले पकड़े गए क्योंकि हमारे वहां स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती है। देखिए इसका फायदा, हमारे कतर में हाई क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज एंश्योर करने के लिए सब कुछ बड़े ही तौर तरीके से किया जाता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के हर ऑफिशियल को दिल से थैंक यू। और एकेडमिक और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, यही वजह है कि आपको बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे कतर में मिलता है। थैंक यू। एंड ऐसे लोग जो ये सोच रहे थे कि अबे कुछ भी लगा देंगे यार, माहौल बन जाएगा, फिर हम भी प्रैक्टिस करने लगेंगे, लो भैया अब प्रैक्टिस करना कि क्या क्या गलत किया जिसकी वजह से हमेशा के लिए बैन कर दिए गए। 89.6 मिर्ची 1 पर। मैं इसीलिए कहता हूं कि एक ही तो दिल है कतर, कितनी बार जीतोगे यार, मजा आ जाता है जब ऐसी चीजें पढ़ते हैं। तो मिर्ची हां, फिलहाल अनुरोध रविचंद्र की आवाज में बंदा जिंदा होना चाहिए।

अभी फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बुखार उतरा है, लेकिन नवंबर में फिर चढ़ा देंगे। क्योंकि कतर में एक बार फिर से लौटेगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कतर 2026 का जादू। #974 यहां आपको मस्त मौला गौरव बता दे कि अब 100 दिनों से भी कम बचा है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कतर 2026, जिसके लिए हम कह सकते हैं ये यूथ का टूर्नामेंट है। फुटबॉल के फ्यूचर के स्टार यहीं से निकलते हैं। 19th of November से December 13th 2026 कतर में ये होने वाला है। एंड कह सकते हैं कि 2025 में भी बेहतरीन तरीके से कतर ने फर्स्ट एवर होस्ट किया था ये फीफा कंपटीशन, जहां पर 48 टीम्स थी। एंड इस बार फिर से हम ये करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं, भविष्य के कुछ बड़े स्टार्स इन्हीं कॉम्पिटिशन में से निकलने वाले। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कतर 2026 एस्पायर जोन कॉम्पिटिशन कॉम्प्लेक्स में फिर से होगा। एंड खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में क्या पता जो पिछली बार ट्रॉफी पोर्चुगल ने उठाई थी, इस बार कौन लेकर जाए? क्या पोर्चुगल अपनी ये ट्रॉफी बचाएगा या फिर कोई नया देश इसे चैलेंज कर ये ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगा? 100 डेज टू गो फॉर फीफा वर्ल्ड कप कतर 2026। गेट रेडी अगर आपको ये फ्यूचर के फुटबॉल स्टार्स देखने हैं तो अभी से देखना शुरू कर दो। याद है ना, मेसी, रोनाल्डो, ये सब अंडर 13 से अंडर 17 के बीच खेलकर इतने बड़े स्टार बने। तो अगले स्टार्स हमें पहले ही देखने को मिल जाए, फिर हम कहें जिसे तुम आज स्टार देख रहे हो, हमने उसको अंडर 17 में ही देख लिया था। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: check. Hey yo, this one is for all the little rock stars.
1: Vacation over हुआ है, अब जाना होगा school. Late morning उठने का बंद होगा rule. Bags on your shoulders, energy रखना full. क्योंकि मिर्ची लेके

0: partner Papa John's. Enjoy double delight offer.
1: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66, and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza. Smile partner Naseem Dental Center. Har smile ho perfect. Sirf Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia, your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out.
2: Kabhi pyar ka ehsaas aur kabhi khud ko diya hua ek khoobsurat tohfa. Festival of Diamonds is back at Tanishq. Rose pehenne ke liye stylish designs ho ya kisi khaas mauke ke liye stunning diamond jewelry. Har piece mein hai Tanishq ka bharosa aur behtareen craftsmanship. Yahi nahi, get a free gold coin on every 3000 riyals spent on diamond purchases. To aaj hi visit kare Tanishq at Lulu Hypermarket, D-Ring Road and Doha Festival City today. Supply.
1: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
3: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
1: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव।

0: जानवी शिवांकर शैल हदा के आवाज में ढोली डा खत्म हुआ और आ गया आपके साथ मस्त मौला गौरव। देखिए भाई साहब कुछ भी कर लीजिए, इस वक्त एक चीज जो हम सबका साथ नहीं दे रही है वो है हॉट ह्यूमिड वाला वेदर।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट,
0: थोड़ी सी और गर्मी क्योंकि अल नथरा स्टार पीरियड जो है वो आ गया है। हॉट ह्यूमिड वेदर इस पूरे दौरान रहता है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, यानी कि उमस और गर्मी अपने चरम की तरफ बढ़ती हुई। आखिरी 11 दिन हमें जो एक्सपीरियंस करने हैं वो इसीलिए करने हैं क्योंकि 24 तारीख तक अब आपको यही स्टार मिलने वाला है। इसका नाम है अल नथरा स्टार और इसके अकॉर्डिंग ये एक आखिरी गर्मी वाला फेज होता है, फिर धीरे धीरे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी पर टेम्परेचर नीचे की तरफ जाएगा। और देखिए ऐसे ही अगस्त बीत जाएगा, फिर सितंबर आ जाएगा और सितंबर में भी मैं रोज बोलूंगा देखना गर्मी कम होगी। अक्टूबर में भी बोलूंगा, नवंबर आते तक एकदम कम होते, दिसंबर में एकदम कम हो जाएगी, बस थोड़ा और टाइम निकालना है दोस्तों। वैसे दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो आज गाड़ी के अंदर कुछ भी बताए पर जो राइट नाउ टेम्परेचर है उसकी हम बात कर लें, इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस, दिन का मैक्सिमम 45 था और मिनिमम अराउंड 34 आएगा। हवाओं की बात करें 12 किलोमीटर से कम की तरफ, वही ह्यूमिडिटी का परसेंटेज जो है वो जबरदस्त तरीके से 40% के आसपास, जो आपको हवा में भी एकदम नमी बना के माहौल को एकदम गर्मा दे रहा है। कोई नहीं, हम कहेंगे कि जब गर्मी जाएगी तब हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिलहाल तो दलित मेहंदी साहब गाने से बल्ले बल्ले कर रहे हैं कानों की।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
2: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
1: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
3: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
3: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live in

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: चलिए जी, गाना का ट्रायल पैक देख लीजिए एंड मस्त मौला गौरव के साथ मिर्ची सुन लीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जरूर मिला लीजिए, घड़ी का टाइम 5:04 से ज्यादा की तरफ।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: अच्छा, मैं आपके साथ आ जाता हूँ, बच जाते हैं शाम के 5, तो बारी आती है जनाब खेलने की। एक आवाज सुनाता हूँ और आपको पकड़नी होती है आवाज है किसकी, और आज की आवाज जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ा ट्रिकी है।
3: फन तो दोनों में है, इट्स जस्ट एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: टाइम 5:04 से ज्यादा की तरफ।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: अच्छा, मैं आपके साथ आ जाता हूँ, बच जाते हैं शाम के 5, तो बारी आती है जनाब खेलने की। एक आवाज सुनाता हूँ और आपको पकड़नी होती है आवाज है किसकी, और आज की आवाज जरा ध्यान से सुनिए।

0: जो मैं पहले करता था मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, करना तो सेम ही है,
1: करना तो सेम ही है, जो पहले करता था वही कर रहा हूँ, करना तो सेम ही है, लेकिन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 5000196 पर इतना ही कह सकता हूँ, आप बता दो ये किस क्रिकेटर की आवाज है।
0: फन तो दोनों में है, इट्स जस्ट एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मैं पहले करता था मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, करना तो सेम ही है।
1: बस इतना ही कह सकता हूँ कि कामयाब कप्तानों की लिस्ट में इनका नाम भी आ गया है। 89.6 मिर्ची वन पर मस्ट फॉलो गौरव ने हिंट दे दी है, अब आपको बताना है कि ये कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी आवाज मैं सुना रहा हूँ।
0: फन तो दोनों में है, इट्स जस्ट एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मैं पहले करता था मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, करना तो सेम ही है।
1: बस अब आपको बताना है 5000196 पर, कठिन नहीं है, आप अपने दिमाग के घोड़ों को जलाएंगे, अब इनसे दौड़ाएंगे तो आपके दिमाग के सूरज खिल जाएंगे, और यहीं पर मैंने एक छोटी सी हिंट दे दी है। 5000196 पर इंतजार कर रहे हैं इस आवाज का, किस क्रिकेटर से लेना देना है यही आपको बताना है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: नंदन की आवाज में रांझण गाना सुनाया कि इसने मसमौला गौरव ने, लेकिन अभी जो सुना रहा हूँ इस घंटे वो है पहचान कौन की, एक आवाज जो आपको पहचाननी है किस क्रिकेटर की है।
1: फन तो दोनों में है, इट्स जस्ट एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मैं पहले करता था मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, करना तो सेम ही है
0: जो मैं पहले कर रहा था वही करता है, इट्स जस्ट एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किस क्रिकेटर की आवाज है जो मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ 5000 1896 मिर्ची के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए जल्दी।
1: फन तो दोनों में है, इट्स जस्ट एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मैं पहले करता था मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, करना तो
0: जल्दी जल्दी आप करिए 5000 1896 पर वॉइस नोट में अपना जवाब हाँ जी भेज दीजिए मिर्ची पर, ताकि मैं यहाँ कतर को सुना पाऊँ आपका जवाब सही है या गलत। ये फिक्र मत कीजिए कि सही है तभी भेजेंगे, अरे कभी कभी गलत को भी भेजने की कोशिश कीजिए, मजा आता है। मिर्ची इट्स हॉट
2: मैडम। गुड इवनिंग,
3: हाय,
2: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहा है या लोन के
2: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गया ना
2: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत, बात कर दो।
3: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार, आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं, आपका मुर्गा बन गया
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं, एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
4: से सॉरी,
3: I'm sorry, नवे, I'm sorry.
4: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को
3: कुकड़ो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस, है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट, आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट,
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये,
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

0: हाँ जी ओले ओवा मुकाबला यश नार्वेकर की आवाज में यहाँ सुनाया किसने। लेकिन फिलहाल तो पहचान कौन में एक आवाज सुनाई और पूछा ये कौन से क्रिकेटर की है।
1: फन तो दोनों में है, इट्स जस्ट एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो मैं पहले करता था मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, करना तो सेम ही है।
0: जवाब आ गए लोगों के भैया।
2: गुड इवनिंग गौरव,
0: गुड इवनिंग यूसुफ,
2: कैसे हैं आप?
0: हाँ जी,
2: यूसुफ विद यू।
0: जी जी,
2: ये आवाज रोहित शर्मा की लग रही है, आई एम नॉट श्योर बट जस्ट गेसिंग। ओके, थैंक यू,
0: बाय बाय।
3: हाय गौरव, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग? वेल, आई थिंक द वॉइस इज बेवर, बेवर, आई थिंक सो, द यंग मैन।
4: हे मस्त मोला गौरव, दिस इज योगेश, आई थिंक सो द वॉइस ऑफ क्रिकेटर इज सूर्य कुमार,
5: युवराज सिंह।
0: ओके,
6: अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जाहिर नजीर।
0: जी जाहिर भाई,
6: द पर्सन इन द ऑडियो नॉट इज रोहित शर्मा,
0: द कैप्टन ऑफ द टीम। ओके,
6: या आई थिंक इट्स रोहित शर्मा।
0: ओके ब्रदर,
7: हेलो गौरव।
0: हां जी, हां जी, ठीक हो?
7: रेडियो मिर्ची को के सभी आरजेस को मेरा सलाम।
0: भाई भाई सलाम अलैकुम।
7: ये बस जो क्रिकेटर की है, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव इसका ही है।
0: सूर्य कुमार यादव,
7: आई एम नॉट श्योर बट आई एम गेसिंग।
0: ओके ओके ब्रदर, थैंक
7: यू। रेडियो मिर्ची,
0: ओके, इट्स हॉट, इट्स हॉट।
8: नमस्कार सर, कैसे हो?
0: बढ़िया भाई,
8: सर ये अपना सूर्य कुमार यादव है।
0: ओके, और कोई मतलब इसके अलावा भी हैं लोग? गौरव भाई, नीरज दिस साइड क्रिकेटर वॉइस इज सूर्य कुमार यादव। एंड अगर इसके बाद बात करें तो किसी एक ने और भेजा है, उन्होंने भी लिखा है रोहित शर्मा नाम है इनका, उदय। इतने लोगों के जवाब के बीच में कुछ लोगों ने लिख के भेजा, उनके पढ़ रहा हूँ। कैरोल इस्लाम, इन्होंने भी कहा है कि ये कोहली की आवाज़ है। एक और भाई साहब हैं जिनको मैं अभी यहाँ तुरंत प्ले करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने भी अपना जवाब भेजा है। अब जब जवाब भेजा है तो मिर्ची पे सुनाई भी देना चाहिए, तो भाई साहब आपका जवाब भी हम सुन लेते हैं कि आपने किस क्रिकेटर की आवाज गेस की है।
9: वही सूर्य कुमार यादव का है।
0: अब जितने लोगों ने सूर्य कुमार कहा है वो तालियां बजा ले अपने लिए क्योंकि ये आवाज सूर्य कुमार यादव की ही है। एंड यस, दिस इज सूर्य कुमार यादव, हालांकि वेरी रिजम्बलिंग वॉइस टू रोहित शर्मा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं भी कंफ्यूज आता, कोहली साहब कहीं से नहीं थे। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, आप जिन लोगों के जवाब गलत हैं वो बिल्कुल रूठेंगे नहीं, नाराज नहीं होंगे, गलतियां हो जाती हैं। अगला गाना मैं आपको मनाने के लिए गा रहा हूँ, मिर्ची इट्स हॉट। फिलहाल मैंने कुमार सानू साहब

0: Papa John's. Enjoy double delight offer.
1: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66, and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Smile partner, Naseem Dental Center. Her smile ho perfect. Sirf Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia, your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड. अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर. एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल. और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स. लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे. टीएनसी अप्लाई. गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu. बुक योर्स नाउ.
1: द मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव.

0: के
1: मोरनी बन के नहीं, आपके दिमाग में और कौन कौन सी चीज बन रही है वो पकड़ लेती है। तभी तो नाम है दी मेंटलेस शुहानी शाह, जो आपके दिमाग को ऑब्जर्व करती हैं, पढ़ती हैं एंड आपको बता देती हैं कि उसमें चल क्या रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ये तो एस्ट्रोलॉजी से भी बड़ा है। नहीं नहीं, असल में ये है असली वाला इल्यूजन, जहां पर वो आपके दिमाग के साथ आपको फोर्सफुली थिंक कराती हैं और आप बहते चले जाते हैं एंड देन आपको लगता है इसने तो मेरा दिमाग पढ़ लिया। बेसिकली ये सब जो है मोह माया है सर, इल्यूजन। ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना ही सुहानी का काम है। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कथा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय आईपे, और ये होने वाली है 25 सितंबर को QNCC में। वो शाम जिसका हम और आप इंतजार कर रहे हैं वो अब एकदम दस्तक दे चुकी है। एंड ऐसे में मैं इतना ही कहूंगा, जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक करा लो, कहीं सा ना हो आप पीछे रह जाओ सर, क्योंकि हमें लग रहा है आपने अभी तक ये सोचा है थोड़ा सा और दिन निकल जाने तो तब करा लेंगे। इस चक्कर में कहीं पीछे भाई महंगी होती जाएगी फिर आपको मुश्किल लगेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितनी जल्दी सके अपनी टिकट्स बुक करा लो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता मेरे दोस्त। वेल प्रेजेंटेड बाय आईपे, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, एसोसिएट पार्टनर डेयरी क्वीन पापा जॉन्स, रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर, हमारे रेस्टोर पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, पार्टनर्ड बाय हमारे शॉपिंग पार्टनर डाइसो जापान होम्स आर अस, हमारे प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, हमारे प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, एंड साथ ही साथ मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वाड, एंड टिकेटिंग पार्टनर स्नो सिटी, जहां पर आपको मिल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पर टिकट। और मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ मेंटलिस्ट इवनिंग नहीं होगी, इसमें होगा एंटरटेनमेंट का तड़का, यानी कि नाच गाना धमाल म्यूजिक एंड साथ ही साथ द मेंटलिस्ट सुहानी शाह, ये सब कुछ होगा। तो टिकट ले लो और 25 सितंबर की शाम हमारे नाम कर दो, एंटरटेनमेंट का जिम्मा हमने उठा लिया। फिलहाल डिस्को कर लो, वसुंधरा दास, के शान लॉय सब मिलके गा।

0: Hollywood, Bollywood, bold
1: eye. Only on Mirchi. It's hot.
2: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
3: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
2: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ हॉट।
0: Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
9: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
6: The Mentalist Suhani Shah.

0: जब भेजी थी दुआ, काश मेरी दुआ भी लग जाए और सुन ली जाए ताकि मुझे थोड़ा और उधार मिल जाए।
1: मस्त मौला गौरव।
0: आप ये सोचिएगा मत मन में कि गौरव रोता क्यों है, हर बार रोता है पैसों के लिए। अरे भाई, तारीख डबल डिजिट की हो गई और हमारे वॉलेट से सैलरी रफू चक्कर हो गई, लेकिन आपके पास बची है तो आई पे के रेट हम बता देते हैं। राइट नाउ एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.14 रुपए हैं, 26.14 INR। एक कतरी रियाल के बदले लंकन रुपीज 91.89। वहीं अगर हम पाकिस्तान रुपीज की बात करेंगे जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.20 पाकिस्तानी रुपीज। वहीं अगर हम नेपाल रुपीज की बात करें, तपाई को हाजूर एक कतरी रियाल के बदले वाहिनी 41.78 को नेपाल रुपीज के रेट छदाई। हाँ जी हाजूर, 41.78 41.78 को नेपाल पीट गर्छ बहिनी, घर भेजन लाइस राइट टाइम छ। अगर इसके बाद हम बंधु बांग्लादेश का बात करें दादा, तो एक्टर कतरे रियाल के बदले 33.88 तो 33.88 आइट रेट अच्छे बांग्लादेश का। तो मस्त मौला गौरव के साथ अगर आपके पास पैसा ज्यादा है हमको दो, नहीं तो मिर्ची पे गाने का एंटरटेनमेंट लो, फेविकॉल से चिपका दो सैया का फोटो, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।

0: हाँ जी माशू का गाना खत्म हुआ एंड आपके साथ कौन आया?
1: मस्त मौला गौरव।
0: और देवी और सजनों, हम जब आते हैं तो माहौल बन जाता है क्योंकि हम बहुत सारा एंटरटेनमेंट अपने साथ लाते हैं। और आज तो एंटरटेनमेंट के सुपर डुपर इंसान का हैप्पी वाला बर्थडे है। शाम के 6:07
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: और ये और कोई नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड में जिससे खौफ खा जाए वो एक्टर सुनील शेट्टी। यस, इनको अगर बॉलीवुड में एंट्री की बात करें उस टाइम पर इनको बहुत सारे गैंगस्टर्स फोन करते थे, हड़काते थे, लेकिन भाई ने कभी भी अपने आप को नीचे नहीं होने दिया। और जब इंडस्ट्री में आए तो अन्ना बनकर छा गए। बात करो मैं वन एंड ओनली सुनील पाजी की। यस, सुनील शेट्टी जी, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और मेरे मन में आया क्यों ना सवाल आपसे हम सुनील शेट्टी जी से ही रिलेटेड कर ले, है जी, कैसा रहेगा? वैसे हम बता दें, सुनील शेट्टी जी, यूं तो इनको सब अन्ना कहते हैं, लेकिन एक फिल्म में इन्होंने सच में अन्ना का किरदार निभाया था। हाँ जी, याद रखेगा, सुनील शेट्टी को यूं तो लोग सुनील अन्ना बोलते हैं, लेकिन अन्ना ने एक फिल्म में बकायदा अन्ना का किरदार निभाया था। एक पुलिस ऑफिसर बने थे एंड अंडरवर्ल्ड से उस में लड़ाई होती है। यही बताना है आपको उस फिल्म का नाम क्या है। आई एम वेरी श्योर हम में से ज्यादातर लोगों ने उस फिल्म को देखा है एंड क्या जबरदस्त मूवी थी। इतने कह सकते हो उसमें कुछ और भी सुपरस्टार थे, इरफान खान, अक्षय कुमार जैसे। अब बताइए वो कौन सी फिल्म थी जिसमें सुनील शेट्टी बकायदा अन्ना बने थे एक पुलिस ऑफिसर के रूप में। और बर्थडे बॉय को आज हम अपनी तरफ से गिफ्ट भी देना चाहते हैं। यस, सुनील पाजी की एक बात करें तो उनकी सबसे खास बात यह है कि वो हमेशा बड़े निडर रहे। जब भी हुआ उन्होंने सच में सबसे यही कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता है। ये डरती बड़ी माँ है उनका, भले ये डायलॉग आप कुछ भी कह लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ हो गया है। फिलहाल अगला गाना, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा।

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC supply.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah live in

0: सुनील पाजी की बात ही अलग है भैया। बात करो मैं आज बर्थडे बॉय सुनील शेट्टी की। प्रोमिनेंट इंडियन एक्टर हैं, इनको प्यार से लोग अन्ना बुलाते हैं। मोर देन 100 फिल्म्स और कुछ ऐसी फिल्में जो आज भी लोग कहते हैं भाई अपने आप में अलग है। वेल, इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं इनको ब्लैक बेल्ट हासिल है फुल कॉन्टैक्ट किक बॉक्सिंग में, ब्लैक बेल्ट। हाँ जी, एंड मैं आपको बता दूं इनका फेवरेट कैरेक्टर देव था मूवी धड़कन का, हम सबका फेवरेट था। और मैंने एक सवाल आज पूछा था कि एक फिल्म में इन्होंने अन्ना नाम से बकायदा पुलिस का किरदार किया था, वो कौन सी फिल्म है? बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, किसी ने लिखकर, किसी ने यहाँ बताकर।
1: गुड इवनिंग, मूवी का नाम है खाकी और मेरा नाम है रितेश। थैंक यू सो मच।
0: जी जी जी, थैंक यू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्मिता ने भी लिखा है खाकी, यूसुफ भाई ने भी लिखा है खाकी, एंड अगर बात करें तो राजीव जी हैं, इन्होंने भी लिखा है खाकी। ये हैं भाई साहब कैलूल जी, इन्होंने नहीं नहीं ये तो दूसरा लिखा है इन्होंने, रोहित जी ने लिखा है खाकी। इसके अलावा थैंक यू टू मुकुल भाई, इन्होंने भी खाकी लिखा है। इसके अलावा शमशीद दुईन भाई, इन्होंने लिखा है आन। वेल, अब आप बताइए वो कौन सी फिल्म थी सुनील शेट्टी की जिसमें उन्होंने बकायदा अन्ना का किरदार निभाया था, और उस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा और अक्षय कुमार जैसे स्टार भी थे। चलिए, हिंट को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया, एक आखिरी मौका दे रहे हैं 5000196 पर। हमारे सुनील शेट्टी ने अन्ना का किरदार, फिल्म अक्षय कुमार इरफान खान जैसे स्टार थे, एंड शत्रुघ्न सिन्हा भी। मिर्ची थॉट।

कद ऊंचा भी था, लंबा भी था और बॉडी एकदम सुपर डुपर फिट भी। बात करो मैं सुनील शेट्टी जी का, आज जन्मदिन है, हैप्पी वाला बर्थडे सुनील जी, आपको हम दिल से थैंक यू कहते हैं कि आपने हमारे बचपन को बड़ा ही खूबसूरत बनाया। साइकिल से चलने वाला हीरो था वो, थे सुनील शेट्टी, वो जो ये धरती मेरी माँ है कहने वाले सुनील शेट्टी। जब भी आए रवि किशन में हमें हंसाया, मोहरा में हमें विलेनियस रोल में भी एक अच्छा हीरो बनकर दिखाया, एंड कह सकते हैं भाई वो कमाल किया जो कोई नहीं कर सकता। यस, एंड मैंने आज एक सवाल किया था कि सुनील शेट्टी साहब की एक फिल्म थी जिसमें वो अक्षय कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और इरफान खान के साथ थे, बताइए वो कौन सी फिल्म थी। एंड लेट मी टेल यू, ज्यादातर लोग गलत जवाब दे पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फिल्म का नाम था आन। यस, आन मैन एट वर्क, 2004 में आई ये मूवी। इसमें सुनील शेट्टी जो है वो अन्ना का किरदार कर रहे थे, अप्पा कदम नायक बनके, एंड इसके अलावा अक्षय कुमार, डीसीपी हरिओम पटनायक बने थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, परेश रावल थे, इरफान खान, जैकी श्रॉफ, ओम पुरी, बहुत सारे सुपरस्टार, रवीना टंडन थी इस फिल्म में। एंड यही था आज का सही जवाब जो कोई नहीं दे पाया सिर्फ एक शख्स को छोड़कर। तो मलिक दिन भाई आपका जवाब बिल्कुल सही है, आन मैन एट वर्क। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इस पिक्चर बहुत बार देखा है। इसमें एक सीन है जिसमें इरफान खान से बोलते हैं, अरे भाई वो बच्चों को दूध पिला दो, हम अभी आ रहे हैं, पुलिस वालों के साथ जा रहे हैं, अभी आते हैं, हम आएंगे, तुम उसको दूध पिलाओ, हाँ, एंड थोड़ा आराम से, पठानवाड़ी में हमारा अपना घर है, ऐसे बोल के क्या कमाल की एक्टिंग की थी। खैर चलिए, अब हमारे लिए एक फिल्म जो सुनील शेट्टी साहब ने बहुत खूबसूरत बनाई, मोहरा, उसमें उनके ऊपर फिल्माया गया एक गाना था। वैसे ज्यादातर गाना तो अक्षय कुमार रवीना पे था, एक गाना सुनील शेट्टी जी के साथ था। आहा, पंकज उदास, साधना सरगम दोनों ने मिलकर इस गाने को बहुत ब्यूटीफुल बना दिया है, इसलिए हम बर्थडे बॉय के लिए ये गाने डेडिकेट कर रहे हैं।

हाँ जी दिलजीत दोसांझ और बादशाह के आवाज में नैना गाना खत्म हुआ और अपने मुंह को लेकर आ गया है। मस्त मौला गौरव। से नैना के हिसाब से तो आंख अगर होती तो मुंह होता, लेकिन नैनो के हिसाब से मुख लेके आ गया मस्त मौला गौरव। बातें कर रहा है आपसे अच्छी अच्छी, और इन सब बातों के बीच में अच्छी बात तो याद दिलाना मेरा काम है। और अच्छी बात यह है कि सुहानी शाह पहली बार अपने कतर में आ रही है, ऐसी परफॉर्मेंस जिसका हम सबको बहुत इंतजार था, क्योंकि हम कहते थे यार हमने म्यूजिक कॉन्सर्ट देख लिया कतर में, हमने फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल देख लिया, अब कुछ नया एक्सपीरियंस करना, और नया एक्सपीरियंस ही तो करा रहे। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय आईपे। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस है, मैं ये कह सकता हूँ इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते देखना है तो आपको सुहानी के इस माइंड मैजिक एंड मिस्ट्री वाले शो में जरूर आना है। एट 25 सितंबर QNCC में होने वाली है शाम, प्रेजेंटेड बाय आईपे, एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वीन पापा जोन्स, साथ ही साथ हमारे रेस्टो पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, शॉपिंग पार्टनर डाइसर जापान होम्स आर अस, हमारे प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी एंड मार्केटिंग पार्टनर या यूं बोल ले प्रिंटिंग, एंड हमारे भाई ब्रांड पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, मार्केटिंग पार्टनर्स क्यू स्क्वाड, एंड साथ ही साथ हमारे टिकटिंग पार्टनर स्नून सिटी, जहां पर जाकर आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो अर्ली बर्ड ऑफर के तहत। याद रखिए ये अर्ली बर्ड ऑफर आपको मिल रहा है, इसका फायदा उठा लो। एंड मैं बता दूं सुहानी शाह मेंटल शो करेंगे, लेकिन उसके साथ हमने एंटरटेनमेंट का भी और ख्याल करके थोड़ा मजेदार बनाया माहौल को। यस, यहां मिलने वाला है आपको संगीत का धमाल एंड डांस का कमाल, ये दोनों होगा। बस आप जल्दी से अपनी टिकट बुक कर लो, क्योंकि 25 सितंबर की शाम कतर को कई सालों तक याद रहने वाली शाम मिलेगी। मिर्ची इट्स हॉट, टिकट बुक करना है SCT पे। हाँ जी, अर्ली बर्ड ऑफर, जल्दी करो जल्दी।

0: Papa John's. Enjoy double delight offer.
1: Two small pizzas at 44. Two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Smile partner, Naseem Dental Center. Her smile ho perfect. Sif Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia. Your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Zee5। डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: एक बच्चे ने फ्लाइट में सीट बेल्ट नहीं पहनी, प्लेन कैंसिल हो गया। सच कह रहे हैं, कनाडा में हुआ है प्लेन कैंसिल क्योंकि बच्चे ने सीट बेल्ट नहीं पहनी।
1: क्या कह रहे हो?
0: अरे ऐसा ही हुआ है, एक एयरलाइन थी जिसमें बच्चे को कहा गया, हाँ जी पोर्टर एयरलाइन, जिनसे बच्चे को कहा गया कि भैया तुम लोगों को ये सीट बेल्ट पहननी है। विक्टोरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ब्रिटिश कोलंबिया से ये रनवे पर जा रही थी एंड जैसे ये आगे बढ़ी कहा गया कि बच्चे सीट बेल्ट पहन लो, बच्चे ने कहा मैं नहीं पहनने वाला आंटी अंकल। एंड फिर क्या था भाई, एयरलाइंस ने बच्चे की माँ को कहा ऐसा मत कराइए मैडम, जल्दी जल्दी इसको बेल्ट पहनाइए। वो जब विफल हो गई माँ के सामने, बच्चा नहीं माना, फिर क्या था, फ्लाइट को वापस गेट पर लाया गया ताकि इन दोनों को डीबोर्ड किया जा सके। लेकिन इन लोगों को हटाया गया, इनके लगेज को हटाया गया। इस दौरान कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज जब करने के लिए वापस से गए तो पता लगा भैया ये वाली फ्लाइट जो टोरंटो जाने वाली थी कैंसिल हो गई है, अब ये कल उड़ेगी। कुल मिलाकर क्योंकि एयरपोर्ट पर सब कुछ मामला बड़ा बिजी था तो बस यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया और एक बच्चे की वजह से फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स को ये पूरा दंश झेलना पड़ा। मैं इसीलिए कहता हूँ बच्चे मन के सच्चे लेकिन कभी कभी कर देते हैं एकदम चक दे फट्टे। कुल मिलाकर इतने ही कहेंगे कि अगली बार जब कोई बच्चा सीट बेल्ट ना पहने तो पूरे प्लेन को जाकर उस बच्चे को मनाना चाहिए, क्या पता वो बच्चा मान जाए, क्योंकि माँ कभी कभी बच्चे को नहीं मना पाती है तो दूसरों की जिम्मेदारी आ जाती है। आप मना देना, हम इस मामले में बड़े अलग हैं। देख चमाट ले भैया पहन ले, अब नहीं तो बोल रही हूँ आखिरी बार, मेरी मम्मी होती तो यही कर देती, ये बच्चे की मम्मी इसको भाई बता नहीं करे पाई। वेल 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
1: वेल, ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा। अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

0: कतर के बच्चों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। यानी कि बिल्कुल मेरे जैसा। शाम के 7:45
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: लेकिन कतर के बच्चों का दिमाग वाकई में मैथ्स की बात आए, लॉजिक की बात आए, तो ये जबरदस्त तरीके से चलता है। और इसकी एक बानगी देखने को मिली जब कतर के कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे मिलान इटली में होने वाले इंटरनेशनल कंपटीशन में, जहां मैथमेटिक्स एंड लॉजिक गेम्स चैंपियनशिप चल रही थी और कतर के नाम 8 डिफरेंट प्राइजेस आए हैं। हाँ जी, अलग अलग क्षेत्रों से, दुनिया भर की कंट्रीज से बच्चे आए थे। लगभग 23 कंट्रीज, 595 स्टूडेंट वर्ल्ड मैथमेटिक्स एंड लॉजिक गेम्स चैंपियनशिप में, एंड कतर को मिले इसमें 8 मेडल। वेल, ये इसका 40th एडिशन था, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि ये मुझसे कैसे छूटा रह गया। अरे, मैं पहले शायद कतर में नहीं था ना, अगर मैं होता तो 8 की जगह 9वां मेडल भी आता, आई एम श्योर, क्योंकि आप जानते हैं मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64। दोस्तों, मैथ्स और लॉजिक के मामले में चाचा चौधरी साबू से ज्यादा तेज हमारा दिमाग चलता है। मौका चूक गया मैं, काश मैं भी स्टूडेंट होता और मैं जा पाता, नौवा भी हो जाता। 89.6 मिर्ची 1, जिन बच्चों को मिला उनके लिए हमारी तरफ से कुनाफा खिलवाओ, हमें बकलावा भिजवा दो, मिर्ची छोट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं
1: आप? कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास,
3: अरे यार
1: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
3: हो सकता है, हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन,
1: भाई ये नंबर क्या है, तू बता तू क्यों लाइन में आ रहा है?
3: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूं यार, तू लाइन में आ रहा है, मैं लाइन में आ रहा हूं। तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूं यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहां पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
1: है,
3: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक,
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इजंट इट? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्स से जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

रील्स पर कुछ लाइक और कमेंट से खुश हो जाते हो, हम कहते हैं अब सेलिब्रिटी बनने की बारी है। आपको लगता है कि आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो एक कंटेंट हम दे रहे हैं। MOPH एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके लेकर आए हैं ग्लोबल यूथ कॉम्पिटिशन ऑन इन्फ्लुएंजा एंड COVID-19 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब सोचेंगे आप की ये सीन क्या है, तो हम सीन समझा रहे हैं। आपको बनानी है एक इनोवेटिव और क्रिएटिव वीडियो। थीम है हाउ डू यू शील्ड योर सर्कल फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक इन्फ्लुएंजा एंड COVID-19। ये थीम दी है WHO ने, जिस पर आपको बनाना है अपना एक वीडियो, जिसमें आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को इन दोनों बीमारियों से बचाते हुए इन्फॉर्मेशन दोगे, एड्रेस करते हुए लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाओगे, और हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ आप इस वीडियो में खुद भी नजर आओगे। फिर क्या है, अगर आपका ये वीडियो हुआ जबरदस्त, तो बस मौका मिल जाएगा पूरी दुनिया पे छा जाने का। और इस कॉम्पिटिशन में आपको अपनी यूनिक एंट्री September 13th, 2026 से पहले भेज देनी है। तो उठाओ अपना कैमरा, लगाओ अपना क्रिएटिव दिमाग और बना दो इसी थीम पर एक खूबसूरत सा वीडियो। और पसंद आया WHO और MOPH को, तो मौका मिल जाएगा पूरे दुनिया भर में सेलिब्रिटी बनने का, और पूरे वर्ल्ड स्टेज पर आप छा जाओगे। और अच्छी बात यह है कि इस वीडियो से किसी का नुकसान नहीं होना है, सबका फायदा ही होना है। अवेयरनेस तो ऐसे ही फैला रहे हो, और क्या पता सेलिब्रिटी बन जाओ बाद में, कहो गौरव भाई थैंक यू, तुमने बताया और आज मेरी जिंदगी और किस्मत दोनों बदल गई। 89.6 मिर्ची 1 पर ऐसी अवेयरनेस मस्त मौला गौरव ही लेता है। रेडियो मिर्ची पर आपके लिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: Papa John's. Enjoy double delight offer.
1: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66, and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Smile partner, Naseem Dental Center. Har smile ho perfect. Sif Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia. Your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड. अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर. एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल. और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max. लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे. TNC अप्लाई.
2: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
1: Google आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, Instagram आपकी लाइक्स, Netflix आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
3: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ. गेट देम एट STD Snoo Noo. बुक योर्स नाउ.

ट्रैफिक लाइट के साथ साथ गाड़ी के हेडलाइट के भी रूल होते हैं। जो हम जाने अनजाने में फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर नहीं किए तो 10,000 कतरी रियाल तक का फाइन है दोस्त। #974 मस्त बोलो गौरव, आपको बताना चाहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर इशू कर दिया है, और ये इम्पोर्टेंट रिमाइंडर उन लोगों के लिए है जो न जाने अपनी गाड़ी की बिजली इतना क्यों बचा रहे, हेडलाइट क्यों नहीं जला रहे। यस, हम आपको बता दें, सनसेट से लेके सनराइज तक और इवन डे टाइम में अगर मौसम खराब है, विजिबिलिटी पुअर है, तो आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखनी है, रेयर लाइट्स ऑन होनी चाहिए। और हाँ, जब सामने से कोई गाड़ी आ रही तो हाई बीम पर चला के सामने वाले को ना ब्लाइंड मत करो, कोशिश करो लो बीम पे ही गाड़ी रहे, डिप्ड बीम पे। हाँ जी, पर कुछ लोग हैं जो ये रूल को तोड़ते हैं, ये बाइसाइकिल से लेकर मोटरसाइकिल और कार्स पर भी अप्लाई होता है, और कार पर तो होता ही होता है। सो गाइस, आई विल जस्ट से कि अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन रखिए, जब भी अंधेरा हो उसका ज्यादा ध्यान रखिए। एंड मैं इतना ही कहूंगा कि आप इतना पैसा बचा क्यों रहे, करामा आपको इसका बिल थोड़े देता है, ये तो आपकी बैटरी के ऊपर है, और बैटरी एक डेढ़ साल में खराब होती होती रहेगी। आप चाहे कितना ही बचा लो, ये छोटी बचत से आप अपनी जिंदगी को बड़े रिस्क में डाल रहे हो और अपने पॉकेट को भी। 10,000 कतरी रियाल आपके वहां कितना रुपया होता है याद रखो, 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

अरे कोई जमाना वाना नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं टिकट बुक करने में। लेकिन हमारी आदत है, हम कुछ काम कहते हैं लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं, फिर उस टाइम पे थोड़ा अलग सा एड्रेनलिन रश जो है अपनी बॉडी के अंदर लाएंगे। अरे हम बात कर रहे हैं दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, जिसकी टिकट्स आपको अभी एस सिटी स्नोनू पर मिल रही है डिस्काउंटेड प्राइस पर अर्ली बर्ड ऑफर के तहत। एंड कुछ लोग हैं जो टिकट्स बुक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा और टाइम निकल जाने दो, जब एकदम लास्ट मोमेंट आएगा ना तब हम टिकट के लिए स्ट्रगल करेंगे, मतलब मजा आता है उनको ये करने में। अरे भाई जब अर्ली बर्ड ऑफर में डिस्काउंटेड प्राइस पर टिकट चल रहे हैं तो अपने लिए वही बुक कर लो ना, क्योंकि ये वो शाम है जो आपको कई सालों तक याद रहेगी, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं कि कोई इंसान किसी का दिमाग पढ़ के उसके मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में वो किस चीज के बारे में सोच रहा है ये पढ़ पा रहा है। हाँ जी, ये भले ही आपको अलग लगे लेकिन वाकई में स्टनिंग काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा है। दिमाग झन्ना आ जाएगा, हम सच बता रहे हैं। एंड अगर अभी तक आपने सुहानी शाह को कभी नहीं देखा है, गो एंड चेक इट आउट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह आपको सुहानी शाह का ये मेंटल शो दिखेगा जिसको हम द मेंटलिस्ट कह रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिमाग से खेलना इस लड़की को आता है। एंड अगर इसे देखना चाहते हो तो एस सिटी स्नोनू पर जाकर अपनी टिकट बुक कर दो। एंड फिलहाल के लिए मस्पोलो गौरव अब निकलेगा यहां से, देखे वाणी गौराम आपको करके टाटा बाय, प्रणाम एंड मां सलाम। हबीबी मिलेंगे बुखरा यानी कि कल, तब तक के लिए मिर्ची सुनते रहो, इट्स हॉट।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
1: मेरा बॉस एआई पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे एआई से रिप्लेस कर देगा, क्या करूं?
2: अरे तू सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे, एआई को।
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और मेरा बर्थडे आने वाला है और ये बात मेरे जितने लोग को पता है आसपास उस बारे में वो बहुत खुश हैं, मुझे याद दिलाते रहते हैं कि 10 दिन रिमेनिंग, 9 डेज रिमेनिंग ऐसा करके। मुझे इस बात का कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों है। मुझे ना ऐसा बर्थडे वाले दिन पे कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है बचपन से। आई फील वेरी एंग्शियस जब भी मेरा बर्थडे आ रहा होता है ना, कि उस दिन कुछ अलग सा होगा, कुछ अलग करना, पता नहीं क्या लगता है मुझे। फैजान हाशमी साहब का वो शेर याद आता है कि मैं अपनी खुशियां अकेले मनाया करता हूं, मैं अपनी खुशियां अकेले मनाया करता हूं, यही वो गम है जो तुझसे छुपा है मेरा। क्या बात है, मुझे लगता है गम तो क्या, बस ये अजीब सी बात है। आपको भी ऐसा होता है क्या? अगर आप भी ऐसे शख्स हैं जो कि अपना बर्थडे मनाने में हिचकिचाते हैं, मन करता है बर्थडे के दिन की जमीन खुले और आप उसमें समा जाएं, तो लिख भेजें अपना एक्सपीरियंस मुझे मेरे इंस्टाग्राम RJ ताशी मिर्ची पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Murga, murga. Nafiyat wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: Mirchi.
5: It's Navid.
4: बोल रहा हूँ.
5: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप वो लूप के लिए क्या करना पड़ेगा?
4: वो आपको मुझे बताना होगा.
5: तो मैं अभी बता दूँ?
4: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
5: संजना.
4: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
5: अपने हस्बैंड का.
4: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
5: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
4: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
5: भड़क भी जाते हैं.
4: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
5: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
4: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
5: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
4: हूं. ओके चलिए.
6: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
5: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
6: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का.
4: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है रेडियो मिर्ची पे.
5: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
4: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू. थैंक यू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इजंट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, और अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका दाशी मिर्ची महफिल पर नजर करे आपको आज का शायर। आज आपको रूबरू करा रहे हैं शमीम अब्बास साहब से। शमीम अब्बास साहब इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो मॉडर्न शायर्स में बड़े विख्यात हैं। मुंबई के हैं, 1948 में इनका जन्म हुआ था। और इनका एक शेर है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। कहते हैं कि याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम, याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम, फिर सुबह तलक सोचते रहते हैं वो क्या थी। अरे रे रे रे भाई, मुझे ADHD है ना, तो मेरा ना ऐसे याददाश्त थोड़ी सी ऐसी रहती है कि मतलब कभी कुछ याद आता है कभी कुछ भूल जाता हूँ। तो मैं तो इस शेर से एकदम कनेक्ट करता हूँ। शमीम अब्बास साहब ने क्या बारीक बात को नोटिस करा है कि याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम, फिर सुबह तलक सोचते रहते हैं वो क्या थी। जिंदाबाद। अगर आपका भी कोई पसंदीदा शेर हो लिख भेजें भाई साहब मेरे इंस्टाग्राम RJTashi MIRCHI RJTashi मिर्ची पर बिल्कुल। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9170983983, वहां भी बात कर सकते हैं आप मुझसे। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपके दाशिए आपके साथ। और एक तरीके का प्यार ये भी बताया गया है लिटरेचर में कि जमाने में ऐसा भी प्यार हुआ है लोगों को कि उन्हें हर जगह अपना प्रेमी दिखाई देता है। माशूक की नजर जो है वो हर जगह माशूक को ही ढूंढ लेती है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, हर जगह उन्हें अपने प्यार की एक झलक दिखाई देती है। चिराग शर्मा का एक शेर नजर कर रहा हूं आपके कि मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। आय हाय हाय हाय, मतलब शाखें एकदम गुलाब ऑफर कर दे रही है भाई, ऐसा वाला सीन हो जा रहा है। और प्यार में इंसान जो है वो इतना खतरनाक है कि उसे लग रहा है कि आय हाय हाय मेरी माशूक की तरफ से आ रहा है, तो क्यों ना इसे नोच लूँ मैं इस गुलाब को। मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। चिराग शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ। अगर ऐसा ही आपको कोई पसंदीदा शेर हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं आरजे ताशी मिर्ची पर, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे 9170983983 पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
0: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आप कताशी करे आपको नजर आज कताशी अनप्लग्ड। और यार ये गजल जो है मेरी बड़ी पसंदीदा है, ये खयाम साहब की म्यूजिक है, इसमें बेगम अख्तर ने इसे गाया है और क्या तो गजल है। दोस्त दाग दहलवी साहब की गजल का उनवान है उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं। और आप इसकी ने कॉम्पोजिशन खयाम साहब की देखें और बेगम अख्तर साहिबा ने तो क्या ही गाया है। मतलब मैं तो उसका I'm just a lover of this ghazal, तो इसलिए एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से।

में भी है, खयाम साहब की कॉम्पोजिशन थी और ओरिजिनली बेगम अख्तर जी की आवाज में दैट वाज अ दाग दहलवी साहब की लिखी हुई गजल, बड़ी पसंदीदा गजलों में से एक है मेरी। और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो बिल्कुल भाई साहब, मतलब आप बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, कहाँ बोलेंगे मुझसे, मेरे इंस्टाग्राम आरजे ताशी मिर्ची पर या फिर मेरे व्हाट्सएप 9170 हाँ क्या 9170983983 पर। बिल्कुल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

अच्छा, दिलीप साहब हो, राज कपूर साहब हो, या फिर हो देव आनंद, ये तीनों ऐसे दिग्गज स्टार्स थे जिन्होंने जम करके ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स की, बिकॉज ऑफ कोर्स जब इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो इंडियन सिनेमा बस स्टार्ट ही हुआ था. लेकिन दीज थ्री पीपल वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब कलर की बात हुई. जब कलर आने लगा इंडस्ट्री में और कलर एक्सपेंसिव भी बहुत था, तो फिर एक ना ट्रेंड चला था. क्योंकि इट वॉज सो एक्सपेंसिव, तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ऐसा करते थे कि किसी इम्पॉर्टेंट फिल्म का इम्पॉर्टेंट सीन या फिर उसका इम्पॉर्टेंट गाना जो था ना, वो कलर में कर देते थे. अब ऐसे में दिलीप साहब, देवानंद और राज कपूर साहब ने ना पूरी इंडस्ट्री को चेंज करने की ठान ली थी. सो दे डिसाइडेड कि वो बहुत सारी फिल्मों को मना करेंगे और जो फिल्में कलर में होंगी उनको करना शुरू करेंगे. अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स फिर कोशिश करने लगे थे कि वो कलर में पिक्चरें बनाए. वेल, आज जिस फिल्म की बात होगी वो देव साहब की पहली कलर फिल्म थी. Which film am I going to talk about? ये अभी आपको पता चल जाएगा. बस कुछ गानों के उस पार. मैं हूँ श्रेया, only on पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, गुड इवनिंग।
3: हाय,
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
4: पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गए ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: है।
4: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी।
3: I'm sorry.
5: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची। It's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah. Live

मूवी का नाम है गाइड, जो कि देव साहब की पहली मूवी थी इन कलर। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और मैं बात कर रही थी कि कैसे देव साहब, राज कपूर साहब और दिलीप साहब ने ठान लिया था कि वो भाई कलर को लेकर के आएंगे इन द इंडस्ट्री, बिकॉज एट दैट टाइम कलर बहुत एक्सपेंसिव था। सो इसीलिए ज्यादातर पिक्चरों का इम्पोर्टेंट सीन या फिर इम्पोर्टेंट अगर कोई गाना होता है, इम्पोर्टेंट सीक्वेंस होता है, उसको कलर में कर दिया जाता था। बट दीज थ्री लेजेंड्स डिसाइडेड कि भाई अगर इम्पोर्टेंट पिक्चर भी होगी तब भी वो नहीं करेंगे अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। इस चक्कर में ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ना अगर ये तीन अपनी फिल्म में चाहिए थे तो वो पिक्चरों को कलर करने लगे। तो आज बात हो रही है देव साहब की पहली फिल्म विच वॉज इन कलर, एंड दैट वॉज नन अदर देन हिज ओन फिल्म गाइड। सो गाइड की ना बड़ी मजेदार बातें हैं और कुछ ऐसी इमोशनल बातें हैं ना जो आपके दिल को छू लेंगी, जैसे कि अभी नहीं बताऊंगी, गाने के साथ बताऊंगी। सो कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Delight offer.
1: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66, and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza. Smile partner, Naseem Dental Center. Har smile ho perfect. Sif Naseem Dental ke saath. Visit kare Muntaza ya Azizia, your trusted smile partner. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. Google आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, Instagram आपकी लाइक्स, Netflix आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo. बुक योर्स नाउ.
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

गाइड फिल्म जब देव साहब बना रहे थे ना, तो ये उनके लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल फिल्म थी. सो नंबर वन, ये उनकी पहली कलर फिल्म थी. एंड दूसरी, इस फिल्म में ही वॉन्टेड एवरीथिंग परफेक्ट, ही वॉन्टेड एवरीथिंग करेक्ट, और इसीलिए उन्होंने अपने फेवरेट कंपोजर एस डी बर्मन साहब को लिया था. अब हुआ ये कि दादा एक्चुअली में उस समय काफी बीमार पड़ गए टू द एक्सटेंट कि उन्होंने खुद देव साहब से कहा कि भाई बहुत टाइम लग रहा है उनको गाने बनाने में और पता नहीं वो कब ठीक हो पाएंगे. तो इसलिए दादा ने उनको रेकमेंड किया कि क्यों ना वो कोई और म्यूजिक कंपोजर को हायर कर लें. लेकिन आपको पता है, देव साहब ने इस बात को एकदम खारिज कर दिया. ही वॉन्टेड कि गाइड फिल्म के जो यू नो डेप्थ वाले गाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस डी बर्मन बनाए. जब एस डी बर्मन साहब ठीक ठाक होकर के 6 महीने के बाद वापस लौटे, तो पता है उन्होंने कौन सा गाना सबसे पहले बनाया? अभी बताऊंगी. वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है गाइड की, देव आनंद की पहली कलर फिल्म की। सो आई वाज टेलिंग यू कि कैसे देव साहब ने 6 महीने तक वेट किया था कि दादा यानी एसटी बर्मन साहब ठीक होकर के वापस सेट पे आ जाएं और रिकॉर्डिंग में लग जाएं। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि एसटी बर्मन उस दौरान काफ़ी बीमार पड़ गए थे, इतने बीमार पड़ गए थे कि उन्होंने देव साहब को ये तक रेकमेंड किया था दैट ही कैन गो अहेड विद सम अदर म्यूजिशियन। लेकिन देव साहब को दादा बहुत पसंद थे और उनको पता था कि उन्हीं का म्यूजिक ना इस फिल्म में 4 चांद लगा सकता है। तो जब दादा वापस आए ठीक हो करके, जो पहला गाना उन्होंने बनाया वो पता है कौन सा था? वो था ये गाना जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। और ये गाना ना पता है कैसे शूट हुआ है? ये चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे शूट हुआ था और हीरोइन जो है वहीदा रहमान, वो अपने आप को शीशे में देख रही है। ऐसे विजन दिया गया है, उसी शीशे को रखा गया है कहते हैं, जिस शीशे में क्वीन पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था उस चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking.

अच्छा, देवानंद और उनके भाई विजय आनंद ने पहले पता है हसरत जयपुरी साहब को अप्रोच किया था। उनको लगा था कि इस फिल्म के गाने हसरत साहब से लिखवाते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज गाइड फिल्म की बात हो रही है, द एवरग्रीन हिट फिल्म। ऑफ कोर्स इट इज गाइड, देव साहब की पहली कलर फिल्म भी थी बाय द वे। सो जब म्यूजिक टीम बना रहे थे ना देवानंद एंड उनके भाई विजय आनंद, तो उन्होंने ऑफ कोर्स एस डी बर्मन साहब को तो लिया ही था, लेकिन एज अ लिरिसिस्ट दे फर्स्ट वेंट टू हसरत जयपुरी। हसरत साहब के गाने कुछ उन दोनों भाइयों को ना पसंद नहीं आए, मतलब उनको लगा कि शायद गाने थोड़े हल्के हैं। तो देन दे टर्न्ड टू शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को ये तो पता चल गया था कि वो दोनों की दूसरी चॉइस बने। इस बात ने शैलेंद्र जी को काफी हर्ट किया था। फिर आगे क्या हुआ, मजेदार सी कहानी है। वापस आओ श्रेया के साथ, देन आई विल लेट यू नो, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो
3: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
2: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
2: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
3: हाँ बताइए।
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा, वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
3: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
3: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
2: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: जा कहाँ रहा है?
3: नहीं, वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
3: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूँ,
2: मतलब
3: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
2: चल
3: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, फोन काट रहे हैं यार।
2: आपको से फोन मत करो, मैं इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बात विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।

0: Jim Morga, no Fate Kesat, only on Mirchi. It's hot. Yep,
1: it's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at SCT Snoonu. Book yours now.
6: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शैलेंद्र जी इस बात से नाराज कम हर्ट ज्यादा थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ और आज गाइड फिल्म की बात हो रही है। वेल, द फर्स्ट फिल्म ऑफ देवानंद जो कि कलर में थी। अब इस फिल्म के लिए, क्योंकि विजय आनंद और देवानंद दोनों भाई मिलके ये फिल्म बना रहे थे, उन्होंने ना जो म्यूजिक टीम रखी वो पहले थी SD बर्मन साहब एंड लिरिसिस्ट के तौर पे हसरत जयपुरी। हसरत साहब के लिरिक्स दोनों भाइयों को कुछ खास पसंद नहीं आए और देव साहब अपनी फिल्म के म्यूजिक के लिए एक्सट्रीमली कंसर्न रहते थे, बिकॉज ही थॉट कि फिल्म का म्यूजिक बहुत काम आता है फिल्म की पॉपुलैरिटी में। तो फिर दे टर्न्ड टुवर्ड्स शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को बाय वर्ड ऑफ माउथ ये तो पता चल गया था कि पहले ये दोनों भाई गए थे हसरत साहब के पास। इस बात से वो इतने दुखी हुए कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं बने दोनों आनंद ब्रदर्स की, कि जब विजय आनंद और देव साहब उनके पास ये फिल्म लेके पहुंचे तो शैलेंद्र जी ने एक ऐसा अमाउंट कोट किया जो पहले कभी किसी लिरिसिस्ट ने नहीं मांगा था। ही थॉट, बिकॉज वो कहते हैं ना वो ईगो क्लैश हो गया, कि भाई अब मैं इतना पैसा मांगूंगा कि ये लोग अपना समूह लेकर के वापस लौट जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है क्या हुआ? देव साहब और विजय आनंद मान गए और पहला गाना, इस मीटिंग के बाद जो पहले गाने का मुखड़ा लेकर के ये दोनों ब्रदर्स वापस गए थे, वाज सो हैप्पी, वो कौन सा गाना था बताऊंगी आपको श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: और इससे पहले कि विजय आनंद और देवानंद उस मीटिंग से बाहर निकलते, तब तक उनको इस गाने का मुखड़ा मिल चुका था।
1: गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं बता रही थी कि कैसे ना देव साहब और विजय आनंद को हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स उस समय बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे फॉर दिस फिल्म। तो देन उनको याद आया कि शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी को ऑलरेडी पता चल चुका था ये बात कि भाई सबसे पहली चॉइस उनकी हसरत जयपुरी थे। तो शैलेंद्र जी ने ना, बिकॉज ही वॉज सो हर्ट कि वो इन दोनों भाइयों की सेकेंड चॉइस बने, उन्होंने ढेर सारा पैसा कोट कर दिया। भाई ईगो तो बीच में आएगा ही, बिकॉज दिल से उनको दुख लगा था। तो ही नेवर थॉट, शैलेंद्र जी को ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि विजय आनंद और देवानंद इतने सारे पैसे उनको देने के लिए मान जाएंगे। जब दोनों मान गए तो उस मीटिंग से निकलने से पहले ये गाने का मुखड़ा शैलेंद्र जी उनको दे चुके थे। यही गाना फ्रॉम द फिल्म गाइड कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
4: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
3: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: 89.6, 89.6, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पहली कौन सी इंडियन फिल्म थी टू गेट इनविटेशन फॉर कांस फिल्म फेस्टिवल, तो क्या आपको पता होगा? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। इट वॉज नन अदर दैन देव साहब की फिल्म गाइड। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इट वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म एवर टू बी इन्वाइटेड बाई द कांस फिल्म फेस्टिवल कमिटी। और कांस क्लासिक में इस फिल्म को, यू नो, अ सेक्शन ऑफ द फिल्म को दिखाया भी गया था। देवानंद एक्चुअली वॉक द रेड कार्पेट फॉर दिस इवेंट, और वो भी, यू नो, उनके साथ कौन थे? इंडियन एम्बेसडर उस टाइम के टू फ्रांस। सो इट वॉज huge thing and a lot of television channels and a lot of television channels तो नहीं होते थे, मतलब दूरदर्शन और सब ने ना, न्यूज ने, सब ने इस बात को कवर किया था। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज ना देव साहब की फिल्म गाइड, जो कि उनकी पहली कलर फिल्म भी थी, बस उसी की बातें चल रही हैं, उसी के गाने हो रहे हैं, और आप और मैं मिल करके रिलैक्स कर रहे हैं। सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे फिर फोन ही नहीं आएगा।

सिर्फ इस एक गाने के लिए आरडी बर्मन साहब ने इनको कन्विंस किया था कि बस एक बार तबला बजा दीजिए. एंड दिस रिमेन्स द ओनली सॉन्ग इन इंडियन हिंदी सिनेमा जहां पर इन्होंने तबला बजाया. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ पंडित शिव कुमार शर्मा, उन्होंने इस गाने में गाइड फिल्म के गाने में तबला बजाया. सो एट दैट टाइम उन्होंने तबला छोड़ दिया था बिकॉज ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन संतूर. लेकिन आर टी बर्मन साहब पंचमदा उनके घर गए और उनको घंटों समझाया कि बस एक ही गाने पे आपका तबला हो जाए, अदरवाइज गाना अधूरा रहेगा. वेल, वो कौन सा गाना है? सैया बेईमान फ्रॉम द फिल्म गाइड. एस डी बर्मन साहब की धुन है, शैलेंद्र जी के लिरिक्स हैं, लता जी की आवाज है और तबला बाय पंडित शिव कुमार शर्मा. अब नेक्स्ट मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

जब विजय आनंद और देवानंद साहब ने ऑथर आर के नारायण से बात की तो उन्हें पता चला द गाइड जो उन्होंने किताब लिखी थी वो एक्चुअली में रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड थी. सो आर के नारायण ने उनको बताया कि द प्लॉट ऑफ द नॉवल वॉज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द आउटब्रेक एंड अ ड्रॉट प्रॉब्लम दैट टुक प्लेस उनके खुद के होम टाउन में जो कि मैसूर में था. सो वहाँ पे एक महीने तक करीब पानी नहीं बरसा था और लोगों को प्यास के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था. एंड देन ही सेड कि एक्चुअली में ये हुआ था कि म्यूनिसिपल काउंसिल ने डिसाइड किया था कि वो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे और इसलिए अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत सारी प्रार्थनाएं और रिचुअल्स कर रहे थे वो रिवर कावेरी के बैंक पे जा करके बैठे और वहाँ पे जब उन्होंने प्रेस की तो 12th डे इट एक्चुअली रेन्ड. इसी एक बात को द गाइड बुक से उठा करके इसमें लव स्टोरी को थोड़ा पिरो करके इन दोनों ब्रदर्स ने दी आनंद ब्रदर्स विजय आनंद एंड देव आनंद ने द गाइड में पेश किया. लेकिन आपको क्या लगता है ये फिल्म चली थी? वेल अभी बताऊंगी. श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल क्योंकि मिर्ची लेके

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री इनवाइटेड थी फॉर द प्रीमियर ऑफ दिस फिल्म, लेकिन किसी ने भी आकर के ना विजय आनंद को मूवी देखने के बाद कंग्रेचुलेट नहीं किया. इट लेफ्ट हिम हार्ट ब्रोकन. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ. लोग ना डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि विजय आनंद और देवानंद ने इतनी ऑफ बीट फिल्म बनाई है, और उस टाइम पे लोगों को ना इस फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं समझ में आ रहा था. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड. वेल, कहते हैं कि जब ये मूवी थिएटर में खुली तो बहुत ही, मतलब जब खुली थी तब तो भाई बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पे रिस्पॉन्स था, पर धीरे धीरे ऑडियंस कम होने लगी. बट आफ्टर अ वीक इस फिल्म की ऑडियंस फिर बढ़ने लगी. एंड देन इट वेंट ऑन टू बिकम ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स एंड इट वन 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी गाइड. पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया. कम बैक राइट हियर.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
4: मैं करूँ?
5: आप करोगे?
4: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
5: वो तो पता है मेरा बस चलता है एक-एक को घुसन मार के आती हूँ।
4: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड।
3: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड इट्स टाइम फॉर मी टू गो. लेकिन जाने से पहले आपको तो पता ही है कि गड्डी में बैठना होता है और दूर हाईवे तक मेरे साथ जाना होता है. और राइट, आज का मेरा हाईवे हिट ना उन लोगों पे है जो खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं और गम में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं. सो मेरी मम्मी हमेशा एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि बहुत खुशी आपके दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए और दुख आपके दिल पे नहीं चढ़ना चाहिए, बिकॉज ये तो जीवन है.
1: यही है
0: रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ. On that note, this is Shreya signing off. मिलते कल.

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, वन रिपीट।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।